0: வந்தே மாதரம்.
1: சுஜலாம் சுஃபலாம் மலையஜ சீதலாம்.

शुभ प्रभात। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की अंतिम तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद

0: 96% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

गुरु नानक ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेगा समझो उसने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। आपा चिन्हना एक महान गुण है। इस बात का अनुभव महात्मा गांधी को उस समय हुआ जब वे बैरिस्टरी की विद्या प्राप्त कर रहे थे। आपा चिन्हना मनुष्य को अपने अंदर की कमजोरियों से अवगत कराता है तथा जब वह उन्हें देखकर लज्जित होता है और हृदय से उनसे छुटकारा पाने की चाह रखकर प्रयास करता है तब उसे अपने अंदर विद्यमान प्रभु ज्योति से प्रकाश मिलता है तथा उन पर विजय पाने में सक्षम होता है। धीरे धीरे आगे चलकर स्वयं को पूरी तरह से जानने के कारण उसे प्रभु की असीम शक्ति का वह स्रोत उपलब्ध हो जाता है कि वह आत्मबल द्वारा महामानव बन जाता है। गांधी जी का जीवन इसी का ज्वलंत उदाहरण है। कहते हैं गांधी जी पहले स्वभाव से संकोची थे, 10 आदमियों के सामने बोलने से घबराते थे। दूसरा, असत्य भाषण उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। इन कारणों से उनकी वकालत नहीं चली। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े व्यापारी सेठ अब्दुल्ला ने अपने व्यापार की देखरेख की सहायता के लिए गांधी जी को वहां बुलाया। इस प्रकार गांधी जी डरबन शहर पहुंचे। पर जब उन्होंने भारतीयों के प्रति गोरों के अत्याचार को देखा तो वे सिहर उठे। उनकी आत्मा ने उन्हें ललकारा, उठो जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, शोषण के विरुद्ध आवाज लगाओ, पीड़ितों के मुक्तिदाता बनो। क्योंकि गांधी जी आपा चिन्हने का सबक सीख चुके थे उन्हें आत्मा की आवाज सुनने में देर नहीं लगी। अपने अंदर की प्रभु की शक्ति के भंडार को पहचान कर उनमें अंग्रेजी साम्राज्य से टकराने का अदम्य साहस पैदा हो गया। झेपू और संकोची गांधी अब शक्तिवान बन चुके थे। गांधी जी पगड़ी उतारे बिना ही बाहर चले गए, पर यह अपमान उनके हृदय को बेध गया तथा उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ठानी। दक्षिण अफ्रीका में दूसरी हृदय विदारक घटना तब घटी जब गांधी जी वहां रेल यात्रा कर रहे थे। रात के 9 बजे एक अंग्रेज उनके डिब्बे में आया तथा एक हिंदुस्तानी को वहां देख बहुत क्रोधित हुआ। उसने रेल कर्मचारियों को बुलाकर गांधी जी को उस डिब्बे से उतारने को कहा।

जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था तथा उनके द्वारा इनकार किए जाने पर उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। साथ ही उनका सामान भी नीचे फेंक दिया गया। गाड़ी चली गई और गांधी जी रात भर शीत में ठिठुरते रहे, पर उनके आत्मबल ने, जो आपा चिन्हने द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था, उन्हें गर्मी प्रदान की। उन्होंने इस अत्याचार के विरुद्ध अपने मन में योजना बनाई। नेटाल सरकार एक ऐसा बिल पास करना चाहती थी जिससे भारतीयों के अधिकार छीनते थे। गांधी जी ने इस बिल के विरुद्ध जनमत तैयार किया, पर फिर भी वह बिल पास हो गया। फिर भी वे हतोत्साहित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें आत्मबल पर भरोसा था। उन्होंने आंदोलन कायम रखा। अंततः उनकी जीत हुई जब ब्रिटिश सरकार द्वारा वह बिल स्वीकृत न हो सका। फिर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को नागरिक अधिकार दिलाने हेतु उन्होंने वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिससे उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। इस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक व्यापारी की सहायता के लिए, पर शोषण, अत्याचार व दमन के विरुद्ध निहत्थे अपने आत्मबल से संघर्ष करते हुए वे पीड़ितों के नेता बन गए। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली थी। शोषकों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने से पहले उन्होंने स्वयं से अपनी कमजोरियों से संघर्ष किया था। अपने भीतर के असत्य से जूझे थे, अपने भीतर के दबूपन व कायरता पर विजय पाई थी। इस प्रकार स्वयं पर विजय पाकर वे एक महामानव बन गए थे तथा उनमें जादुई शक्ति आ गई थी।

यथा कार्यक्रम चिंतन सुबह के 6:10 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं।

और वंदना कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

लता मंगेशकर के स्वर में इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

राजा दशरथ के आंगन में शिशु रूप श्री राम की क्रीड़ा देखते हुए काकभुशुंडी पर माया का प्रभाव होता है। कौतूहल जनित भ्रम से काकभुशुंडी को आश्चर्यचकित देख श्री राम मुस्कुराए। हाथों और घुटनों के बल चलते हुए वे कौवे को पकड़ने दौड़े। कौवा उड़कर भाग चला। मुड़कर देखा तो श्री राम की भुजा उनके ठीक पीछे, मानो अभी उसे पकड़ लेगी। काकभुशुंडी आकाश में जिधर उड़ते, भुजा उनके ठीक पीछे। उड़ते उड़ते काकभुशुंडी ब्रह्मलोक पहुंच गए, फिर भी भुजा ठीक पीछे उतने ही पास। सातों आसमान पार कर काकभुशुंडी जहां भी गए, पीछे मुड़कर देखा तो वही परिदृश्य। और तब भयभीत होकर उन्होंने आंखें मूंद ली। जब आंखें खुली तो फिर अपने को अयोध्या में पाया। श्री राम ठठाकर हंस पड़े। उनके मुंह खोलते ही काकभुशुंडी बरबस उसमें प्रविष्ट हो गए। पेट में जो पहुंचे तो वहां अनेक ब्रह्मांड परिलक्षित हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण के तहत आई जानकारी लेते हैं आज प्रसारित होने वाले बाकी के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की।

हमारी आज की सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। विज्ञान वार्ता कार्यक्रम का समय 7:20 और 7:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी एल्बम के गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत संगीत। 8:45 पर होगा कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी और 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। ग्यारह बजे से होगा कार्यक्रम विविध भारती का और आज शाम 4:29 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

आज शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। खेतीबाड़ी कार्यक्रम का समय है शाम 5:30 और शाम 6:02 पर आप सुनेंगे युवा वाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। रात 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झनकार। आज रात 7:30 पर होगा कार्यक्रम कानूनी सलाह। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आप सुनेंगे रात 7:45 पर। और आज रात 8:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। 10:00 से होगा कार्यक्रम रजनीगंधा और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे अथ वार्ताः भारतं तथा नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे स्वीडन आइसलैंड फिनलैंड डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.7 लाख किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रेस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं सियाराम पासवान और साथियों के स्वरों में ये लोक भजन।

सत्येंद्र कुमार मिश्र के स्वर में आप सुन रहे थे ये लोक भजन। इन्हीं के स्वर में आइए सुनते हैं एक और लोकगीत।

0: सुरेंद्र कुमार मिश्रा और साथियों के स्वरों में इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान वार्ता। विज्ञान वार्ता कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम विषय पर कनिका कुमारी की वार्ता का पुनर्प्रसारण।
1: आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो केवल विकास की कहानी नहीं बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव की गाथा है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम। दोस्तों, भारत को अक्सर हम परंपराओं, संस्कृति और सभ्यता का देश कहते हैं, लेकिन आज का भारत केवल अतीत पर गर्व करने वाला देश नहीं बल्कि वर्तमान में काम करने और भविष्य को गढ़ने वाला देश बन चुका है। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत है विज्ञान और तकनीकी। जब भी हम रात के आकाश में चमकते चांद को देखते हैं, जब मोबाइल से एक क्लिक में पैसा भेजते हैं, जब अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों से उपचार होता है या जब खेतों में अत्याधुनिक तकनीक से फसल लहलहाती है, तो समझ लीजिए विज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसी विज्ञान की यात्रा में भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। प्राचीन भारत विज्ञान की जन्मभूमि। भारत कोई नया वैज्ञानिक राष्ट्र नहीं, हमारी जड़ों हजारों वर्षों पुरानी है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिक्रमा और शून्य का सिद्धांत दिया। सुश्रुत ने शैल चिकित्सा के जटिल ऑपरेशन किए। चरक ने आयुर्वेद को व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व भर के विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। यह वही भारत है जिसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना और विज्ञान को मानव कल्याण का साधन माना। आज का आधुनिक भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान। जब भी अंतरिक्ष विज्ञान की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहले जो नाम आता है वो है इसरो। कल्पना कीजिए, एक समय था जब भारत संसाधनों की कमी से जूझ रहा था और आज वही भारत अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़ रहा है। चंद्रयान की गाथा। चंद्रयान प्रथम ने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की। यह पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। और फिर आया ऐतिहासिक क्षण चंद्रयान 3, जब विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कदम रखा तो केवल मशीन नहीं उतरी थी, वह 140 करोड़ भारतीयों का सपना था जो चांद की धरती को छू रहा था। मंगलयान। भारत पहला ऐसा देश बना जिसने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और वह भी बेहद कम लागत में। दुनिया ने कहा इंडिया कैन डू इट। आदित्य L1। अब भारत सूर्य के रहस्यों को जानने की दिशा में अग्रसर है। गगनयान। बहुत जल्द भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपने देश के मिशनों से अंतरिक्ष में जाएंगे। यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। डिजिटल क्रांति। नए भारत की पहचान। आज यदि कोई विदेशी भारत आता है तो वह केवल ताजमहल नहीं देखता, वह देखता है डिजिटल इंडिया। UPI क्रांति। आज भारत में सड़क किनारे चाय बेचने वाला भी QR कोड से भुगतान लेता है। UPI ने दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल भुगतान कितना सरल हो सकता है। आधार और डिजिटल पहचान। आधार प्रणाली ने सरकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाया, लाखों लोगों तक सीधी सहायता पहुंचाई। स्टार्टअप इंडिया। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक ड्रोन टेक्नोलॉजिक, प्रिंटिक, हर क्षेत्र में भारतीय युवा नया आयाम गढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी। कोविड 19 महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, लेकिन उस कठिन समय में भारत ने जो किया वह ऐतिहासिक था। भारत ने अपने वैज्ञानिकों की मेहनत से स्वदेशी वैक्सीन विकसित की। वैक्सीन मैत्री के माध्यम से कई देशों को सहायता दी। आज भारत फार्मा उद्योग में विश्व का अग्रणी देश है। जेनरिक दवाओं की आपूर्ति में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन परामर्श और डिजिटल हेल्थ कार्ड जैसी सुविधाएं ने दूर दराज के इलाकों तक इलाज पहुंचाया है। कृषि विज्ञान किसान की ताकत। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर बनाया। आज ड्रोन तकनीकी से खेतों की निगरानी हो रही है। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान, जैव उर्वरक सब विज्ञान की देन है। कृषि और तकनीकी का यह संगम भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति दे रहा है। ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक सोच। दोस्तों, विकास तभी सार्थक है जब वह पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखे। भारत आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वच्छ ऊर्जा न केवल प्रदूषण कम कर रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी तैयार कर रही है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। रक्षा विज्ञान सुरक्षित भारत की नींव। विज्ञान एक महत्वपूर्ण उपयोग देश की सुरक्षा में भी होता है। आज भारत रक्षा तकनीकी में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। मिसाइल प्रणाली, ड्रोन तकनीकी, उपग्रह निगरानी, इन सभी क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत की ओर अधिक मजबूत बना रहा है। शिक्षा और अनुसंधान। नई शिक्षा नीति वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित कर रही है। IIT, ISA, एम्स जैसे संस्थान विश्व स्तरीय अनुसंधान कर रहे हैं। अटल ट्रिंकिंग लैब्स बच्चों में नवाचार की भावना जगा रही है। आज का बच्चा केवल किताब नहीं पढ़ रहा, वह रोबोट बना रहा है, ऐप विकसित कर रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है। युवा शक्ति और नवाचार। श्रोताओं, किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है। आज का भारतीय युवा विज्ञान और तकनीकी में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और

0: बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में युवा नए प्रयोग कर रहे हैं। सरकार और संस्थान भी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। विज्ञान और समाज का संबंध, दोस्तों, विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, डिजिटल सेवाएं, ये सभी विज्ञान के ही परिणाम हैं। विज्ञान हमें सोचने की शक्ति देता है, सवाल पूछना सिखाता है और समाधान ढूंढने की प्रेरणा देता है। विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी, यहाँ मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगी। आज भारत की बेटियां भी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह केवल वैज्ञानिक प्रगति नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी संकेत है। विज्ञान और मानवता, विज्ञान का उद्देश्य केवल मशीनें बनाना नहीं, विज्ञान का असली उद्देश्य है जीवन को बेहतर बनाना। स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर परिवहन, बेहतर संचार, यह सब विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है। वैश्विक नेतृत्व की ओर, आज विश्व भारत को एक उभरती वैज्ञानिक शक्ति के रूप में देख रहा है। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल की सराहना विश्व बैंक और कई देशों ने की है। हम तकनीकी को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए उपयोग कर रहे हैं। भविष्य का भारत, आने वाला समय है क्वांटम कंप्यूटिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, 6G तकनीकी का, सेमीकंडक्टर निर्माण का। भारत इन सभी क्षेत्र में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। यदि हम वैज्ञानिक सोच को अपनाएं तो भारत केवल अनुसरण नहीं करेगा, वह नेतृत्व करेगा। प्रिय श्रोताओं, विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता, वह हर उस मन में जन्म लेता है जो सवाल पूछता है। जब एक बच्चा पूछता है आसमान नीला क्यों है, वहीं से विज्ञान शुरू होता है। भारत का भविष्य उज्जवल है क्योंकि हमारे पास जिज्ञासु युवा है, मेहनती वैज्ञानिक है और आत्मविश्वासी राष्ट्र है। आइए हम संकल्प ले वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जो विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बने। इसी विश्वास और गर्व के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: विज्ञान के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम। अभी आप सुन रहे थे कनिका कुमारी की वार्ता का पुनर्प्रसारण। इसके साथ ही आज का विज्ञान वार्ता कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत संगीत। आज के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिमेश रेशमिया के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गाने।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

गीत संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं हिमेश रेशमिया के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

इसके साथ ही गीत संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। समाचारों के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्ण योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री

0: किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
3: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
8: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक

0: प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द। नवभारत टाइम्स में है, आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख। दैनिक जागरण में है, रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह तीन

0: वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security.
3: There will be accorded a card of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and cultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
2: Earlier yesterday, India-Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बने।

0: रहे। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. A correspondent covering the Prime Minister's visit to Norway has filed this report from Oslo.
2: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology and innovation strategic partnership. This reflects their shared commitment to sustainability, innovation and green growth. They encouraged collaboration in research, innovation and talent mobility. In the multilateral and bilateral engagements during his Oslo visit, Prime Minister Narendra Modi invited Nordic investments in areas such as green transition, blue economy, shipbuilding, health and defense. In light of the India-EU FTA and TEPA agreement, he conveyed India's keenness for stronger economic and commercial ties with the Nordic region. On the global issues, the leaders together advocated for rules-based world order and reformed multilateral system. They underlined the importance of de-escalation in the conflict regions. The leaders unequivocally and strongly condemned terrorism, including the terrorist attack in Pahalgam. The Prime Ministers reaffirmed their commitment to further deepen the India-Nordic cooperation. The next India-Nordic summit would be held in Helsinki, Finland. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo, Norway.
1: West Bengal government will roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer, DBT, into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax, and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary pension from the state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies, or government-aided educational institutions. Under the new order, all existing beneficiaries of the Lakshmir Bhandar scheme will be automatically migrated to the Annapurna Yojana. For new applicants, an online portal for the Annapurna Yojana will launch on June 1st, 2026. The Joint Parliamentary Committee, JPC, on One Nation, One Election has said that simultaneous Lok Sabha, Assembly and local body elections can save nearly 7 lakh crore rupees, improve governance efficiency and increase India's GDP growth by up to 1.6%. Addressing a press conference in Gandhinagar, JPC Chairperson P.P. Chaudhary said, India had followed a synchronized election system until 1967 when Lok Sabha and the State Assembly elections were conducted together. He said the cycle was disturbed after the premature dissolution of 7 state assemblies in 1968 and later during the emergency period. Gradually, elections across states went out of synchronization. Mr. Chaudhary said several institutions, including the Election Commission, the Law Commission and parliamentary committees, had over the years recommended simultaneous elections.
3: सारी परिस्थितियों को देख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि
4: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8 मेंबर कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द कमेटी आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ होम मिनिस्टर अलोंग विद हिम एनके सिंह हु इज एन इकोनॉमिस्ट एंड गुलाम नबी आजाद हु इज अ प्रोमिनेंट लीडर विद वास्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वर पार्ट ऑफ इट दैट कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विच रिकमेंडेड दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड विधानसभा शुड बी हेल्ड इन द कंट्री
3: में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने चाहिए।
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Uttar Pradesh is reeling under severe heat wave with record-breaking temperatures every passing day. We have a report.
5: Banda district in Bundelkhand region of the state continues to be the hottest place in the country on the third consecutive day. Maximum temperature here reached 48.2 degrees. There was no respite from the scorching sun to other places of the state also, and the maximum day temperature is oscillating between 44 to 47 degrees at many places. Even nights have become unusually warmer and the minimum temperature is close to 30 degrees in many districts. Animals and birds are worst hit by this mercury rise. Normal life is paralyzed and incidents of heat stroke have increased. The Meteorological Department has issued a red alert regarding severe heat wave in the state for next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
1: Madhya Pradesh is scorching and a severe heat wave. Orange and yellow alert has been issued for several districts as mercury hit 47 degrees Celsius for the first time in the state. We have more in this report.
6: Madhya Pradesh is reeling under intense heat. The blazing sun has made daily life very difficult. The Met Department has issued an orange alert for severe heat wave in several districts including Datia, Bhind, Rewa, Satna, Panna, Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari. A yellow alert has been issued for Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Jabalpur and dozens of other districts. The heat wave is expected to continue for the next 3 to 4 days. On Tuesday, Nogaon recorded 47 degrees Celsius and Khajuraho touched 46.4 degrees Celsius. This is the first time this season that the mercury has reached 47 degrees Celsius. In 22 cities across the state, the maximum temperature crossed 44 degrees Celsius. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, yesterday Mr. Nadda highlighted India's progress towards universal health coverage anchored in a whole of government and whole of society approach.
7: India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses.
1: Director General of Civil Aviation has directed the inspection of fuel control switches on Air India Boeing 787-8 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 787-8 aircraft VT-ANX was grounded on the 2nd of February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. In IPL cricket, riding on a brilliant knock of 93 runs by Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night. Chasing a target of 221 runs set by Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Dhruv Jurel scored an unbeaten 53 runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. And now for a look at today's newspapers is over to Shagun Chopra.
8: Thank you, Abhishek. In a joint article penned by PM Narendra Modi and Italy's PM Giorgia Meloni in The Pioneer, headlines Italy and India, a strategic partnership for the Indo-Mediterranean. The article says Made in Italy has always been synonymous with excellence worldwide, and today it finds a natural synergy with the high quality of goals of the Make in India initiative. US clears Apache how its support services for India, writes the Indian Express. Supreme Court upholds citizens' right to live free from fear of stray dog attacks, informs the Statesman. Top court nod for euthanasia of incurably ill rabid dogs, states the Hindu. The Economic Times in its editorial piece says the real question, OpenAI's win Musk's. Ethical AI development arguments remain. The paper says Elon Musk's case against OpenAI turning into a for-profit organization fell apart on a technicality, but the central question on how OpenAI should be governed remains unanswered. Sam Altman's argument is that its mission drift from non-profit to for-profit was necessitated by the financial reality of the tech's large investment requirements. And finally, tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
9: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं और समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नई यात्री सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहेंगे मौजूद। रांची में सीआईआई की राउंड टेबल बैठक संपन्न। उद्योग सचिव ने कहा झारखंड में 1.5 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रांची के निजी स्कूलों में लॉटरी पूरी। 641 बच्चों का मुफ्त नामांकन के लिए चयन। बोकारो, धनबाद और देवघर समेत राज्य के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और वज्रपात की चेतावनी। और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। सीनियर और जूनियर वर्ग में जीते विजेता और उपविजेता के खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू आज सवेरे 10 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एयरपोर्ट पर नवनिर्मित बिरसा मुंडा की प्रतिमा सहित फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाई ब्रेरी का उद्घाटन और अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यपालक निदेशक एसएस राजू ने कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची में आयोजित सीआईआई की राउंड टेबल बैठक में उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड देश के 44% खनिज संसाधनों के साथ सबसे उपयुक्त निवेश स्थल है। रांची में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं हैं और रांची में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य में मैट्रिक और इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की चिंता बढ़ गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी गुरुजी क्रेडिट योजना बैंकों की उदासीनता के कारण धीमी चल रही है। 15 लाख रुपए तक के इस लोन में हो रही देरी पर अब पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार पर सोची समझी साजिश के तहत बैंकों से लोन रुकवाने का आरोप लगाया है।
10: बच्चों को लोन देने की बात है, वहाँ पर बैंक तरह तरह के जो है हथकंडे अपना के किसी तरह से बच्चों के लोन को रोक रहा है, पर इस पूरी प्रक्रिया में हमारी जानकारी है वह यह है इसमें बैंक जिम्मेवार नहीं है, बल्कि बैंक को इंस्ट्रक्शन साफ साफ ऊपर से फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है कि जानबूझ करके कम से कम बच्चों का लोन जो है अप्रूव किया जाए और उसको टेक्निकल कारण बताकर रिजेक्ट किया जाए।
8: वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार के राजनीतिक दखल और साजिश के कारण बैंक इस योजना में उदासीन रवैया अपना रहे हैं।
11: देखिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना या सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य को संभालने का एक महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन दुख है कि केंद्र की सरकार लगातार इस राज्य के प्रति सौतेलापन का व्यवहार तो करती ही है। बैंकों के द्वारा इस योजना पर भी ग्रहण लगाने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा है।
8: राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का ट्रायल सफल रहा।
12: 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने कल रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पुनर्विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के यौन शोषण के मामले की जांच तेज हो गई है। झालसा की टीम ने प्रारंभिक जांच में आरोपों को सही पाया है। इधर रांची उपायुक्त ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक सैंडल, एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। रांची के एसडीएम कुमार रजत ने बताया कि उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर हुई इस पारदर्शी प्रक्रिया में 89 निजी विद्यालयों की आरक्षित सीटों के लिए बच्चों का चयन किया गया है।
13: 1499 एप्लीकेशंस आए थे, उसमें से 1036 एप्लीकेशंस जो है वो करेक्ट पाए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो 25% जो भी सीट्स हैं उसको हम लोग फुलफिल करेंगे और उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
14: किस स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन हो जाएगा?
15: एक पेरेंट्स जो है वो 3 स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है उसमें एक इनकम का क्राइटेरिया है, एक उसमें डिस्टेंस का क्राइटेरिया है, इसके अलावा बाकी अपना जो आधार कार्ड और ये नॉर्मल है।
12: रांची नगर निगम ने नगर आयुक्त के नाम पर आ रहे फर्जी व्हाट्सएप संदेशों को लेकर अलर्ट जारी किया है। निगम ने बताया कि +84 से शुरू होने वाला नंबर पूरी तरह फर्जी है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसे संदिग्ध नंबरों पर अपनी बैंकिंग या निजी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। रांची के नामकुम पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने गुप्त सूचना के आधार पर सिद्रौल जोड़ा मंदिर के पास घेराबंदी कर यह कार्रवाई की।
16: नामकुम थाना क्षेत्र का सिद्रौल जोड़ा मंदिर है, उसके पास में एक एंटीग्राम चेकिंग लगाई गई थी और उसी समय एक व्यक्ति जिसके पास में एक ब्लू रंग का अपाचे बाइक था उसको हम लोगों ने पूछताछ की। उसने बताया कि जो बाइक है उसके पास में वह चोरी की बाइक है, नंबर प्लेट जो है वो भी चोरी का ही है। बाइक को वो बेड़ो का एक वसीम औहदार है उसके पास लेके जा रहा है।
12: मौसम विभाग ने आज बोकारो, धनबाद और देवघर समेत 9 जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची, हजारीबाग और सिंहभूम सहित अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाओं के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन और वर्षा हो सकती है। झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर शानदार सफलता हासिल की है। ताशकंद रग्बी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे डेविड मुंडा का रांची में भव्य स्वागत हुआ। वहीं रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सीनियर पुरुष स्ट्रोक और महिला फेयरवे वर्ग में झारखंड की टीम विजेता बनी। वहीं जूनियर बालक स्ट्रोक, जूनियर बालिका फेयरवे और जूनियर बालक फेयरवे प्रतियोगिताओं में टीम ने उपविजेता का खिताब अपने नाम किया। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। टेस्ट टीम की कप्तानी शुभमन गिल और उप कप्तानी KL राहुल करेंगे, जबकि वनडे में श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। इस सीरीज के लिए झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की 3 साल बाद वनडे टीम में शानदार वापसी हुई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीआईआई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, महिला पार्षद का आरोप, बैठक में मेरी आपत्तिजनक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाला। हिंदुस्तान ने पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में हुई मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। प्रभात खबर के शब्द हैं, वित्त मंत्री का बड़ा सवाल, घोटालेबाज डीडीओ सीआईडी जांच टीम से दूर है ना, सुनिश्चित करें। दैनिक जागरण ने लिखा है, सबसे गर्म रहा पलामू, कई जिलों में पारा 40 के पार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नई यात्री सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहेंगे मौजूद। रांची में सीआईआई की राउंड टेबल बैठक संपन्न। उद्योग सचिव ने कहा, झारखंड में 1.5 लाख करोड़ के निवेश की संभावनाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रांची के निजी स्कूलों में लॉटरी पूरी, 641 बच्चों का मुफ्त नामांकन के लिए चयन। बोकारो, धनबाद और देवघर समेत राज्य के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और वज्रपात की चेतावनी। और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, सीनियर और जूनियर वर्ग में जीते विजेता और उपविजेता के खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: साथियों, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे मुंडारी लोकगीत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सबसे पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं विशाल ददलानी की आवाज में फिल्म हैदर का गीत।

मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के लिए अगला प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए शशांक त्रिपाठी की आवाज में बी केयरफुल फिल्म का गाना, कुमार कहें बोल और सिद्धार्थ सुहास की है तर्ज़।

अभी आप सुन रहे थे बांके की क्रेजी बारात फिल्म का गाना। दोस्तों आज 20 मई है, आज है विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे। तो विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मधुमक्खियां प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे फूलों से पराग एकत्र कर पौधों के परागण में सहायता करती हैं, जिससे फलों सब्जियों और अनाजों का उत्पादन बढ़ता है। और लेकिन दोस्तों आज प्रदूषण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार घट रही है। ये चिंताजनक बात है ना? अतः हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, तभी मधुमक्खियां सुरक्षित रहेंगी और हमारी खाद्य श्रृंखला भी सुरक्षित रहेगी। इस वर्ष की थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इंग्लिश वो इंग्लिश फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजों में जुग जुग जियो फिल्म का गाना। ये एक पारंपरिक रचना है जिसे संगीतबद्ध किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए शशि और डीजे खुशी की आवाजों में लक्ष्मी फिल्म का गाना। गगन आहूजा हैं गीतकार और संगीतकार हैं शशि और डीजे खुशी।

0: आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजों में। गीतकार हैं शबीर अहमद और तनिष्क बाग्ची, संगीतकार हैं तनिष्क बाग्ची। फिल्म का नाम जवड़िया जोड़ी।
1: वो तोहरी लचके जब कमरिया हसारा जिला ही।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराये, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं। एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतरनाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बज चुके हैं, पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

0: हेलो हजारीबाग। प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को रेडियो दोस्त मासूम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपसे विविध प्रकार की जानकारी भरी बातें करते हैं, साथ ही साथ कुछ गीतों से आपका मनोरंजन भी करते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम आपसे कई प्रकार की जानकारी भरी बातें करेंगे और इसके अलावा एक विशेष कार्यक्रम जो एक परिचर्चा के रूप में होगी वो भी आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे। शुरुआत में दोस्तों, हम अगर मौसम की बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और मौसम विभाग द्वारा आने वाले 10 से 15 दिनों में अत्यधिक गर्मी और तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ऐसे में हम सबों को आने वाले इस मौसम में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि अत्यधिक जो धूप का जो समय होता है उस समय जहां तक संभव हो घर से बाहर ना निकलें, और बहुत जरूरी अगर बाहर निकलना हुआ तो छाता टोपी या गमछा आदि का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके अलावा दिन भर पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, पानी पिएं। अगर प्यास ना भी लगी हो तो पेय पदार्थों का सेवन करें, नींबू पानी, नारियल पानी, बेल शरबत, आम आदि का सेवन करें। कपड़े ढीले ढाले पहने और सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने जो पसीने को सोख लेता है। इसके अलावा लस्सी, जलजीरा फल और पत्तेदार सब्जियों का जहां तक हो सके अधिक इस्तेमाल करें। अधिक तले और भुने हुए भोजन, मसालेदार भोजन का उपयोग न करें। धूप से घर आते ही तुरंत ठंडा पानी न पिएं, कुछ देर रुक जाएं, उसके बाद तापमान सामान्य होने पर पानी का प्रयोग करें। तो इन सब बातों पर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जो हीट वेव और अत्यधिक लू और गर्मी का मौसम है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, आकाशवाणी अपनी सेवा के 90 वर्ष 8 जून 2026 को पूरा कर लेगा। इसी दिन से भारत की आवाज का सफर देश के गांव-गांव तक पहुंचा था। ऐसे तो श्रोताओं, बॉम्बे रेडियो क्लब से भारत का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, मगर 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। सन 1939 में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता शॉर्टवेव से के उद्घाटन के उपलक्ष्य में लिखी कविता में इसे पहली बार आकाशवाणी नाम दिया था। सन 1956 में आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया था। आकाशवाणी का उद्देश्य वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यानी सबके लिए कल्याण है। आकाशवाणी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। आकाशवाणी ने संकट के समय, जैसे आजादी की लड़ाई के समय, युद्ध और आपदा के समय, हर खबर को आवाम तक पहुंचाया। इस पर लोगों का भरोसा ऐसा है कि इंटरनेट के इस दौर में भी रेडियो की खबर को सबसे विश्वसनीय माना जाता है। खबरों के प्रेषण और मनोरंजन के साथ साथ आकाशवाणी संस्कृति की रखवाली में भी अपनी महती भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी का कोहिमा केंद्र 15 जनजातीय बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। 90 साल के सफर के बाद भी आकाशवाणी की आवाज का सुनहरा सफर जारी है। गांव की चौपाल से लेकर स्मार्टफोन ऐप तक आकाशवाणी हर भारतीय से जुड़ा है। वर्तमान में आकाशवाणी का 591 स्टेशन है, 23 भाषाओं और 146 बोलियों के साथ आकाशवाणी देश के 98% आबादी तक अपनी पहुंच बनाए हुए है।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम सब चर्चा कर रहे थे कि कैसे मौसम विभाग द्वारा तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। आप ये सब भी महसूस कर रहे होंगे श्रोताओं कि हाल के कुछ वर्षों में मौसम में उतार चढ़ाव के मामले काफी अधिक देखने सुनने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से इन सभी के कारणों पर ध्यान दें तो एक बात साफ समझ में आती है कि इन सब के पीछे पर्यावरण का असंतुलन एक प्रमुख कारण है। अत्यधिक पेड़ों और जंगलों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हो चुका है। निश्चित रूप से हम सबको ऐसे में सचेत होने की आवश्यकता है। अब भी समय है हम सब अधिक से अधिक पौधा लगाएं और पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दें। आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे और जंगल हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, स्वच्छ हवा मिलती है और जीवन स्वस्थ रहता है। इसके अलावा पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और हवा से जो हानिकारक गैस व धूल है उनको कम करते हैं। पेड़ छाया प्रदान करते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा पेड़ मिट्टी के कटने से बचाव भी करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं और जल स्तर को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम सब जरूर से जरूर अधिक पेड़ लगाएं।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, आज 20 मई है और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के दिवस को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आज ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 20 मई 1734 ईस्वी को आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक एंटोन यांशा का जन्म स्लोवेनिया में हुआ था। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके सम्मान में वर्ष 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस वर्ष आज के दिवस की थीम बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल, यानी प्रकृति से प्रेरणा लेकर हम सबका पोषण करें रखा गया है। दोस्तों, हम सब ये जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर मधुमक्खियों का होना पर्यावरण में क्यों जरूरी है। दरअसल जैव विविधता के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। मधुमक्खी न तो अगर ना हो तो ना तो पौधे उगेंगे और ना भोजन प्राप्त होगा। वास्तव में दुनिया की 75% फसलें मधुमक्खियों से परागण पर निर्भर हैं। सेब, बादाम, कॉफी आदि सब मधुमक्खी की देन है। इन सब के बावजूद चिंताजनक बात यह है कि कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन और जंगलों की धड़ल्ले से कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। इन सब खतरों को देखते हुए सरकारी स्तर से इन्हें बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश में मीठी क्रांति के तहत सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। खादी ग्राम उद्योग द्वारा हनी मिशन के तहत लाखों डब्बे वितरित किए जाते हैं। व्यक्तिगत स्तर से भी हम इनके पालन को, संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। हम बगीचे में, बालकनी में गेंदा, सूरजमुखी, तुलसी आदि के पौधे लगाएंगे तो इससे मधुमक्खियों को भोजन प्राप्त होगा और वो फले फूलेंगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में मधुमक्खियों के महत्व पर आधारित विविध प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, हम कार्यक्रम में अभी चर्चा कर रहे थे मधुमक्खियों के संरक्षण के विषय में। दोस्तों, पर्यावरण के प्रत्येक अंग, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, सभी का अपना महत्व होता है और इनमें प्रत्येक अंग का संरक्षण पूरे पर्यावरण के

0: संरक्षण के लिए जरूरी होता है। इसी थीम पर आज हम आपको अभी एक विशेष कार्यक्रम सुनवाने जा रहे हैं, पशुओं के प्रति दया और करुणा। इस विशेष कार्यक्रम में आप रूबरू होंगे समाज सेवी श्री श्रद्धानंद सिंह, हजारीबाग नगर निगम के महापौर श्री अरविंद कुमार राणा और समाजसेवी और अधिवक्ता भैया मुकेश कुमार से। संकलन एवं वाचन संजय कुमार केसरी का है, प्रस्तुत करता है विक्रम कुमार रंजन। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम।
1: पशुओं के प्रति प्रेम हमें करुणा और दया का पाठ सिखाते हैं। पशु पक्षी हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। पशुओं का देखभाल और उनका सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। पशुओं के प्रति प्रेम न केवल हमारी मानवता को दर्शाती है बल्कि हमारे जीवन में सुख और शांति भी लाती है। इसलिए हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हम उनके साथ सदैव प्रेम पूर्वक और सहानुभूति के साथ पेश आए। दोस्तों, अपने शहर में भी ऐसे कई शख्सियत हैं जो पशु सेवा को अपना धर्म मानते हैं और निष्ठापूर्वक पशुधन के प्रति अपने मानवीय कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हजारीबाग के जाने माने समाज सेवी एवं गौ प्रेमी श्रद्धानंद सिंह जी से। तो श्रद्धानंद जी, सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद बंधु।
1: श्रद्धानंद जी, प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं उनके प्रति मानवीय दया और करुणा को आप किस रूप में देखते हैं?
2: सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो मानव विकास यहाँ तक पहुँचा है उसमें पशु का विशेष योगदान रहा है। पशु पक्षी जो हैं वो प्रकृति के संरक्षक भी हैं और हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में सनातन में इसको बहुत बाखूबी बतलाया गया है कि ये जो इकोसिस्टम है उसमें उनका क्या महत्व है। इसीलिए इस देश में केवल देवी देवताओं का ही पूजा नहीं होता है, हमको जो देता है हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। इसी कड़ी में आप देखते होंगे कि इस देश में अगर शिव जी को पूजा जाता है तो नंदी जी को भी उतना ही सम्मान मिलता है। और सनातन में हमेशा ये बात पे जोर दिया गया है कि प्रकृति जो है वो सर्वोपरि है और हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते
1: हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि मानव और जो भी प्रकृति में जीव जंतु हैं सभी एक दूसरे के पूरक हैं।
2: हम इसको बाखूबी बतला सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जिस चीज की बहुत धार्मिक मान्यता दी गई है, जैसे हम गाय को पूजते हैं, तो ये केवल पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, ये संरक्षण देने की व्यवस्था है। आज अगर गाय मनुष्य के साथ में नहीं होता तो हमको शारीरिक विकास के लिए, मस्तिष्क विकास के लिए जो हमको शुद्ध प्रोटीन का आवश्यकता था ये हमको उपलब्ध नहीं होने पाता। और आज यही कारण है कि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उसमें मानव मस्तिष्क सबसे विकसित माना जाता है। और इसका मूल कारण जो है कि जब हमको समुचित प्रोटीन मिलने लगा, रेगुलर प्रोटीन मिलने लगा दूध के माध्यम से, तो मनुष्य का मस्तिष्क आगे बढ़ा। हम इसको धार्मिक के साथ में जोड़े कि भाई कि अगर गाय रहेगी, और आप देखते हैं कि इस भारतवर्ष की संस्कृति है कि गाय को यहाँ पे माता के रूप में का दर्जा इनको प्राप्त है। इसलिए सभी को इस बात को समझना चाहिए कि अगर प्रकृति का संतुलन चाहते हैं, मानवीय जीवन आसानी से चलते रहे, इसके लिए आपको पशु पक्षी प्रेमी होना आवश्यक हो जाता है।
1: यानी मानवीय दया और करुणा को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज में पशुओं के प्रति सद्भावना और दयालुता के भाव विकसित हों, इसके लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए?
2: हर एक परिवार का जिम्मेवारी बनता है कि वो अपने बच्चों को भी ऐसे शिक्षा दे, उनको ये चीज बतलाए कि इनके बिना मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज किसी भी बच्चे को जोड़ने के लिए, जैसे हम गौशाला देखते हैं तो हम स्कूल को यहाँ पे बोलते हैं कि आप गौशाला आइए और अपने बच्चों को बतलाइए कि गाय क्या है, गौशाला क्या है और

0: गौशाला में संरक्षण कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आने वाली पीढ़ी को ये समझाना ये बतलाना मेरा कर्तव्य बनता है, क्या कि वो नहीं तो हम नहीं।
1: तो हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि जो भी माता पिता हैं वो बच्चों को बचपन से यह संस्कार दे कि हमारे आसपास जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, वो हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है और ये हमारे लिए भी उतने ही आवश्यक हैं।
0: जी हाँ
1: श्रद्धानंद जी, आपके द्वारा शहर में पशुओं के संरक्षण और उनके देखभाल के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है?
0: हजारीबाग में बहुत लोगों को मालूम है और आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि हजारीबाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गौशाला है जो देश के गौशालाओं में उसकी गिनती होती है और करीब 140 साल इसी समाज के द्वारा उसका संचालन हुआ है और आज भी बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ में चल रही है। आज सरकार भी चाहती है कि पशु का संरक्षण हो और झारखंड में गौ कसी भी कानून बना हुआ है, इसलिए समाज अगर किसी कारण से गाय रखती है और लास्ट में वो लाचार हो जाती है रखने के लिए, तो उसके लिए गौशाला में समुचित प्रबंध है कि आप गौशाला को जिम्मा दे दीजिए। सरकार जो गाय पकड़ती है तो उसको रखने के लिए एक तो व्यवस्था चाहिए, क्या है कि जो लॉजिस्टिक होता है पशु का वो बहुत ही खराब ढंग से होता है, उसके लिए भी सरकार संरक्षण के लिए पशु क्रूरता एक्ट बनाई हुई है। तो हमारे पास में गाय आती है, प्रशासन हमको पकड़ करके देती है बजाबते FIR करके, हम गाय को गौशाला में उतारते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और वो अपने जीवन भर शांति पूर्वक गौशाला में रह करके अंतिम रूप तक गौशाला में रहे ना, इसी का देखभाल करते हैं। मेरा वहाँ पे मुख्य उद्देश्य है उसको संरक्षण देना, उसका समुचित भोजन और समुचित इलाज की व्यवस्था, ये गौशाला की जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारी में केवल हम उसका निर्वहन नहीं करते हैं, शहर के बहुत पशु प्रेमी गणमान्य लोग हैं जिनका सहयोग रहता है।
1: तो श्रद्धानंद जी, आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और पशु पक्षियों के साथ साथ हमारी जो गौ माता है, हमारी जो गाय है, उनके संरक्षण पर, उनके देखभाल पर आपने अपने महत्वपूर्ण विचारों को साझा किया, इसलिए एक बार फिर से हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत धन्यवाद और तमाम श्रोताओं को धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा संदेश है कि आप इस कार्यक्रम को सुन करके जरूर पशु प्रेमी बनिएगा और उसके संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा जी। अरविंद जी, पशुओं के प्रति मानवीय दया और करुणा से संबंधित आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरविंद जी, आप हजारीबाग नगर निगम के महापौर हैं, तो इस संदर्भ में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि नगर निगम द्वारा जिले में आवारा और लवारिस पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
2: अभी नगर निगम के बैठक हुई थी 25 अप्रैल को, हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया। वैसे मालिक जो मवेशियों का दूध निकालने के बाद उनको खाने पीने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं, उन्हें नगर निगम अपने कब्जे में ले लेगी और गौशाला भेजेगी। इस तरह आपने कहा कुत्ता के लिए भी, आज कुत्ता लोग देखते हैं कि हिंसक हो रहे हैं, वो झपट्टा मारते हैं, खसी बकरी उठा ले जाते हैं, कहीं कहीं तो बच्चों को उठा ले जाने की बातें आई है। तो नगर निगम एक इस दिशा में पहल कर रही है। हमारा एक संस्था यहाँ पर है पहल, ये भी कुत्तों पर काम कर रही है, कुत्तों का कैसे बाध्याकरण करें, कुत्तों को कैसे ऑपरेशन करें, कुत्तों को कैसे हम किसी निश्चित जगह पर रखें, तो इसकी भी योजना नगर निगम कर रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि शहर में आपको ऐसे मवेशी आवारा घूमते हुए नहीं मिलेंगे। हमने बाकायदा इसके लिए पत्र भी अभी लिख रहे हैं शासन को, एक गाड़ी इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं कि टीम तैयार कर रहे हैं, जहां कहीं भी सड़क पर हमको खुले मवेशी दिखाई देंगे उनको उठा के हम गौशाला भेज देंगे।
1: इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तरफ तो कुत्तों से या जो भी आवारा कुत्ते हैं या जो भी हिंसक पशु हैं उनसे मनुष्यों की तो सुरक्षा होगी, साथ ही साथ ये जो जीव हैं जैसे कुत्ते हो गए या बिल्लियां हो गए, वो दुर्घटनावश उनकी मृत्यु भी नहीं होगी,
2: दुर्घटनावश मृत्यु नहीं होगी और उससे व्यक्तियों को भी नुकसान नहीं होगा। जैसे अभी आप मार्केट में गए, कोई किसी का सब्जी कोई बैल या गाय खा लिया तो वो क्या करेगा, उसको प्यार से बात करेगा नहीं, उसको डंटा से मारता है। और जब डंटा से जब मारा तो गाय किधर दौड़ गई को जानता नहीं है, बाजार में भीड़ है, इस कारण भगदड़ मचता है, गाय चढ़ जाती है, लोग घायल होते हैं। तो नगर निगम इस दिशा में काम कर रही है, स्वयं मवेशियों की सुरक्षा ही नहीं मनुष्यों की सुरक्षा भी हो, भागदौड़ की स्थिति नहीं हो, बड़ी घटना नहीं हो, इसके लिए हम पहले से सबक ले रहे हैं।
1: पशु पक्षियों के प्रति दया और करुणा का भाव बना रहे।

0: उसके लिए आप लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहें?
1: देखिए, कोई भी कार्य अपने स्वयं से पहल करनी होगी, स्वयं को उदाहरण बना के पेश करना होगा, तभी चीजें आसान और बेहतर होगी। मेरा अपील होगा कि आप अपने अगल बगल में ऐसे छोटे छोटे प्रयास करके जीव जंतुओं के मदद कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि हम अपने घर से जो निकलता है कचरा, रोटी सब्जी भात और हरा सब्जी लाते हैं, काटते हैं, बेकार पर पोलिथीन में बांध के फेंक देते हैं। जो सड़क पर मवेशी घूम रहे हैं उसको खाते हैं, तब चूंकि वो तो पोलिथीन खोल नहीं पाते हैं और वो उसको जब दांत लगा था तो कोई कट गया तो कटने वाला भोजन निकल गया, तो उस आशा में पूरा प्लास्टिक खा लेते हैं। तो अगर हम लोगों को कुछ करना चाहिए तो ये करना ये चाहिए कि अगर आपके घर में प्लास्टिक आता है तो आपके घर में वो ऐसे कई बोतल्स होंगे, पानी का बोतल डब्बा होगा, तो आप उसको फेंकिए नहीं, उस प्लास्टिक को पानी के बोतल में डाल दीजिए या डब्बा में डाल दीजिए और जमा करने वाला रख दीजिए। आने वाले समय में नगर निगम योजना बना रही है जो आपके घर से प्लास्टिक खरीदेगी, तो प्लास्टिक सड़क पर नहीं जाएगा, नालियां जाम नहीं होगी, मवेशी नहीं खाएंगे, तो हम सबको एक साथ चल के इस दिशा में काम करना होगा।
0: तो अरविंद जी, आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, पशु पक्षियों के प्रति दया और करुणा के प्रति अपने महत्वपूर्ण विचारों और संदेशों को हमारे श्रोताओं के बीच आपने साझा किया, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, समाज में पशुओं के प्रति मानवीय दया और करुणा बनी रहे, पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की मानवीय क्रूरता ना हो, इसके लिए हमारे संविधान में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को शामिल किया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हजारीबाग सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, सर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग के असिस्टेंट प्रोफेसर भैया मुकेश कुमार। वकील साहब, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बतलाएं कि ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 क्या है।
2: देखिए, अब तक लोगों को लगता था कि शायद ये जो कानून है वो सिर्फ व्यक्ति के लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कानून पशुओं के लिए भी बनाया गया है और उनके खिलाफ भी आप क्रूरता का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी संदर्भ में पीसीए एक्ट 1960 का निर्माण हुआ है, जिसमें आप पशु के खिलाफ कुछ भी क्रूरता नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जैसे आप उसे खाना बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, अकेले में नहीं छोड़ सकते हैं, अगर वो आपके काम लायक नहीं है तो आप उसको पॉइजन देकर, जहर देकर नहीं मार सकते हैं, और उसको जो आवश्यकता, उसकी आवश्यकता जो है वो उसको मिलनी चाहिए। विशेषकर मान लीजिए कि उसकी तबीयत खराब है और फिर आपका उस समय भी आप उसका यूज कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। और अगर ऐसा किया जाता है तो संविधान में, हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानून बना हुआ है, सजा मिल सकती है, फाइन के रूप में भी और जेल जाने के संदर्भ में भी।
0: यदि कोई व्यक्ति पशुओं के खिलाफ क्रूरता करता है तो उन्हें सजा भी मिल सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य प्रावधानों को शामिल किया गया है।
2: देखिए, इसमें पीसीए एक्ट 11 है जिसके तहत सजा का प्रावधान है, और साथ ही साथ आईपीसी में 428 आईपीसी और 429 आईपीसी का प्रावधान था, जो अब बीएनएस में मिस्चीफ के तहत 325 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत में प्रावधान है। इसमें अगर आपके नजदीक में अगर आपने कहीं देखा कि किसी भी पशु के विरुद्ध कोई क्रूरता की जा रही है, जैसा कि मैंने बताया कि उसको अलग थलग छोड़ दिया गया है, वो काम लायक नहीं है तो उसको पॉइजन दे दिया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, अगर इन सारी बातों को आप देखते हैं तो खुद आप नजदीक के पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहें तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, आप वहां भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। और तीसरा, अगर नजदीक का कोई एनजीओ है तो एनजीओ के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं, आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और धारा 25 बीएनएस के तहत उसमें सजा का प्रावधान है, जिसमें 2 साल तक की कारावास का और साथ में या अलग फाइन का, जुर्माना का प्रावधान है।
0: वकील साहब, संविधान के द्वारा पशुओं की क्रूरता के निवारण के लिए कानून तो बनाए गए हैं, ये तो सही है, लेकिन आम लोगों के बीच पशुओं के प्रति करुणा हो, दयालुता हो, उनके प्रति संवेदना हो, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: देखिए, आपने महसूस किया होगा कि हमारे मैथोलॉजी में भी पशुओं के प्रति काफी करुणा है और उसकी देखभाल की अलग से व्यवस्था है और लोगों का उसके प्रति एक अलग श्रद्धा है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हिंदू रीति रिवाज में गाय की पूजा होती है। आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर जो कुत्ता है उसकी भी पूजा होती है। आपने देखा होगा कि चूहा जो है उसकी भी पूजा होती है। यहाँ तक जो बड़ा खतरनाक जानवर है सांप, उसकी भी पूजा की जाती है। तो ये हमारे करुणा का परिचायक है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहा है भारत में, सभी भारतवासियों का, कि कोई भी पशु हो उसके प्रति आप करुणा का भाव रखें, आप उसके प्रति श्रद्धा रखें, उसके वेलफेयर की बात सोचें और उसके प्रति कभी भी क्रूरता न करें। ये हमारा उद्देश्य है।
0: क्योंकि ये जो पशु पक्षी हैं, जो भी जीव जंतु प्रकृति में हैं, प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग है,
2: बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि ये जो पशु पक्षी हैं, वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। चाहे आप चूहा को देख लीजिए, चाहे आप सांप को देख लीजिए, पक्षियों को देख लीजिए, ये सभी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफी उपयोगी है। किसी एक का हमारे प्रकृति से क्षय हो जाना ये बड़ा खतरनाक है और ये बैलेंस को यदि खराब कर देगा तो हमारे लिए बहुत तरह की परेशानी खड़ी हो जाएगी। आप खुद जानते हैं कि जो पक्षी है, चील वगैरह, आपने देखा होगा, वो एक तरह से सफाई का काम करता है प्रकृति का, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रकृति में सफाई करना। तो इस तरह से जितने भी पक्षी हैं और जितने भी जानवर हैं, वो सभी का हमारे प्रकृति में शुरू से काफी महत्व रहा है और इस चीज को पहचाना है हमारे पूर्वजों ने, और यही कारण है कि उसकी पूजा की जाती है, उसका संरक्षण किया जाता है और उनके प्रति एक श्रद्धा की भावना रखी जाती है।
0: तो वकील साहब, आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमारे श्रोताओं के बीच रखा, इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपको भी।
0: श्रोताओं, अब अंत में हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी सुनने वालों से यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप सभी जीव जंतुओं के प्रति अपनी दया और करुणा को बनाए रखें, क्योंकि ये सभी हमारे प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। यदि इनका विनाश होता है तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर भी दिखलाई देंगे। तो इसी संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: पशुओं के प्रति दया और करुणा, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। संकलन एवं वाचन संजय कुमार केसरी का था। प्रस्तुतकर्ता थे विक्रम कुमार रंजन। और श्रोताओ, अब आज के सुविचार के साथ करते हैं दिन की पॉजिटिव शुरुआत। श्रोताओ, प्रकृति के प्रत्येक अंग का संरक्षण बेहद आवश्यक है और उसके लिए हम सबों को प्रयास करना चाहिए। और अब कार्यक्रम से विदा दें। नमस्कार। पचास

0: देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बज चुके हैं, अब हम आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
3: रंग तरंग, बहुत बहुत स्वागत रंग तरंग में आपका।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में लाइव। ये नायाब रिकॉर्डिंग और इससे आगाज रंग तरंग का।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त।

0: आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा, तू नसीब अपना बना ले मुझको।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: ना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

इस कलाम के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार। रंग

0: जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राजहट। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की, फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम तुम सा नहीं देखा।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे।

0: छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम रागिनी।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
6: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जाने कित

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लगाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर का देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, मन करता है इसे गले लगा लें। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले

लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकलें बाहर, किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। यह है आज की इबारत। और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम दो गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे। और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे, फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

गुलजार साहब के बोल, गुलमुहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमुहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमुहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें।

ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती है कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंछी नदिया पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती है कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हों कि धूप कितनी भी तेज हो आपकी आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखती है कि यूनुसी गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, गजब। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़ पहाड़ नदी पंछी सागर फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। रांची में आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 में श्रम एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य राज्य में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी गतिविधियों को और प्रभावी बनाना है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यों को बेहतर गति मिल सके। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो प्रखंड में सिंगार सराय से कैरो समेत तीन महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि मांडर विधानसभा में विकास की यह यात्रा जारी रहेगी और सभी वायदे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदाचार को एक दीपक बताते हुए कहा है कि यह पूरे समाज को प्रकाशित करता है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोग इसी आदर्श के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। उन्होंने आचरण को संतुलित बनाने के लिए शास्त्रों के मापदंडों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एट आईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एट आईआर न्यूज अंडरस्कोर रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हम

0: स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान लिज्जत पापड़ उद्योग की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का आंदोलन बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि विकेंद्रित उत्पादन का यह मॉडल महिलाओं को घर बैठे आत्मनिर्भर बनाता है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट के दूसरे यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। धनबाद में अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए उपायुक्त और एसएसपी ने 112 पेट्रोलिंग बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सायरन, ब्लिंकर और जीपीएस से लैस इन बाइकों की सीधी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी, जिससे शहर के तंग इलाकों में भी पुलिस रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा।
2: धनबाद पुलिस के सभी थानों को 45 स्टेट ऑफ दी आर्ट नई बाइक जिसमें सायरन्स, ब्लिंकर्स, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है वो मुहैया कराया गया है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बाइक की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, फास्ट होती है। जो पतली गलियां हैं उसमें भी बाइक चली जाती हैं जहां हमारे फोर व्हीलर नहीं जा पाते हैं और रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़िया है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 75,157 जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,74,000 रूपये प्रति किलो है। थाईलैंड में आयोजित थर्ड इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झारखंड की युवा निशानेबाज देवासी हेमरम को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में सम्मानित किया। उन्होंने देवासी को आधुनिक शूटिंग किट देने की घोषणा की है।
3: बच्ची एक होनहार है, चाहती है आगे बढ़ना, तो हमने इनसे कहा है कि तुम इतना चिंता मत करो, वो टोटल लिस्ट हमको बना करके दे दो, जहां कहीं से भी होगा जैसे भी होगा हम उस सारे शूटिंग की जो भी सामग्री होगी उतना हम व्यवस्था कर देंगे।
0: हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में चौथी ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस मुकाबले में विदेश सहित देश के 13 राज्यों से लगभग 272 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जहां उनके बीच रोमांचक मुकाबला जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया नई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ, कहा यात्रियों के सफर को अधिक सुगम व आरामदायक बनाना सरकार की प्राथमिकता। ट्रेजरी घोटाले पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कड़ा रुख, जिन विभागों में हुई फर्जी निकासी वहां से डीडीओ को हटाने के निर्देश। रांची में सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सामाजिक कल्याण के कार्यों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल, राज्य को मिलेगी 85% अतिरिक्त बिजली। और हजारीबाग में ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग टूर्नामेंट शुरू, देश विदेश के 272 खिलाड़ी बिसात पर आजमा रहे हैं चालें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती हैं कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब

गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता है जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। भाई, सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6:00। एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं, अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी, देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है कि फ्लैट में रहती हूँ और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए, निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है, लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

0: खबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये नदी का किनारा।
1: क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी, और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सूख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे।

एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोन्टाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई। शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था। ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोन्टाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ 5 गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुद्र का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने

0: का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेल घाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना,
1: अपने
0: इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है?

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

0: हो।
1: अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आसमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीक की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

आपको पता है विविध भारती का जो कंपाउंड है वहाँ सबसे ज्यादा आते हैं पैराकीट्स यानी तोते। आपके इलाके में कौन से पंछी ज्यादा नजर आते हैं?

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना। बंदिनी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है, दो नदियों के बीच बसा है, महानदी, और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि उन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

कितनी सुंदर बात है आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं, किसी को गुलाब पसंद है, किसी को

हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती है कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही है कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

दोस्तों ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है, जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

कैलेंडर की तरफ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन सा खास दिन है, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन, मतलब इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खियां हमारी जिंदगी के लिए और इस दुनिया की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं और ये मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता एंटोन जानसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल पौधे और फसलें नहीं होंगी। खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए, साथ में सोचिए मीठा बोलने के बारे में।

बचपन में हम सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खियां फूलों का रस लेती हैं और पराग के कणों को यहां वहां बिखेर देती हैं। इस तरह से नए पौधे पैदा होते हैं और इसी तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं,

पौधे बढ़ रहे हैं, पर आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियां पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थीं। उनकी जगहों पर आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियां आपके घरों के छज्जों पर अपने घोंसले बना रही हैं, अपने छत्ते बना रही हैं। वो कहां जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए और सोचिए फूलों को बचाने के बारे में, जो मधुमक्खियों की जीवन रेखा है।

20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है और त्रिवेणी के जरिए हम आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियां फूलों का रस ग्रहण करती हैं और उसे

शहद में बदल देती हैं, यानी मधुमक्खियों का जीवन संसार में मिठास बढ़ाने को समर्पित है। हम मधुमक्खियों से मीठा बोलना सीख सकते हैं, हम मधुमक्खियों से संसार का भला करना सीख सकते हैं, हम मधुमक्खियों से ये सीख सकते हैं कि दुनिया में बोलों की मिठास बढ़े। लेकिन ये जो मीठे बोल है ना, कई बार इनके पीछे भी कुछ बदमाशियां और चालाकियां छिपी होती हैं। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं

0: तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा।
1: शाबाश, मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
2: आज की त्रिवेणी थी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। ये त्रिवेणी आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग सुनी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL-PGM-MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार।

0: नेक पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा

0: उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत,
4: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही है। राज्यपाल ने युवाओं को तकनीक आधारित कौशल से जोड़ने और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत केवल सही मार्गदर्शन और अवसर की है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से दक्ष युवा भविष्य में केवल रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले भी बन सकते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में कहा कि मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण दुनिया की स्थिति सभी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में पेट्रोलियम समेत अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को राजनीतिक रूप देना उचित नहीं है। सभी देश हित में प्रधानमंत्री की अपील का पालन कर रहे हैं। श्री सेठ ने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में लिए गए निर्णयों के साथ खड़ा है।
1: दुनिया की स्थिति है किसी से छुपाने, भारत में तो तेल क्यों है नहीं, तेल के कोई तो वही है। क्रूड ऑयल का दाम आसमान छू रहा है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल भारत। मैं भी 10 दिनों से स्कूटी में चल रहा हूँ, शहर में बाहर जाता हूँ तो एक गाड़ी में जाता हूँ, तो जो भी एक एक लीटर दो दो लीटर भी पेट्रोल डीजल बचाए देश का पैसा बच रहा है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 18 मई से 25 मई तक चलाए जा रहे जनजातीय गरिमा उत्सव जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत आज गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तेतरडिप्पा गांव का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर गांव में संचालित विकास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। ग्रामीणों ने पेयजल और बिजली की समस्या प्रमुखता से उठाई, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल क्षमता 90 गीगावाट पार कर गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों समेत अन्य जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद कार्यालय में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है और कर्मी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। अक्सर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्त की कमी को लेकर मरीजों के परिजन संपर्क करते हैं। ऐसे में जिला परिषद अस्पताल प्रबंधन के सहयोग से जरूरतमंदों तक समय पर रक्त पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
2: जिला परिषद में पहली बार ब्लड कैंप लगाया गया है। हर 15 डेज में थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो इन बच्चों का जन्म से ही इनकी जर्नी बहुत मुश्किल होती है, और अगर हम लोग कैंप नहीं लगाएंगे, हम लोग खुद ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो अस्पताल में ब्लड आएगा कहाँ से, इन बच्चों की मुश्किलें कम कैसी होगी। और जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार ब्लड डोनेट जरूर करें।
0: रांची जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से 6 और 7 जून को रांची जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष, महिला, अंडर 11 से अंडर 19 और मास्टर्स वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। संघ ने सभी संबंधित खिलाड़ियों, संस्थानों और इकाइयों से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
2: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
1: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
2: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
1: अच्छा,
2: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, फिर बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
1: अरे वाह,
2: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है, जमी चेहरे की चमक बता रही है।
2: बिल्कुल,
1: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी हैं।
2: बिल्कुल,
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
2: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा,
2: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो, आपको एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोप वे शुरू हो गया वहां पे।
1: अच्छा,
2: तो बस आप रोप वे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
1: अरे वाह,
2: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो है यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
2: बिल्कुल, और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए।
1: हाँ,
2: क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के, बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो, इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
1: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
2: बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है।
1: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
2: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखे, बहुत
1: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है, हमें नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
2: हैं, तरह तरह के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते हैं। जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है, मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी, लेकिन
1: फर्क होता है, स्वाद
2: बिल्कुल फर्क होता है,
1: क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है, आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
2: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
1: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
2: जी।
1: तो अब एक गीत सुन ले।
2: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है,
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि भी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें,
0: हाँ,
1: जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल। तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगी दाल पीठा और हमें खिलाएंगी भी, ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
1: अरे भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पे ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा अभी तुमने शुरू में बताया भी था
1: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन

0: के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग, और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं, तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए।
0: हाँ।
1: बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
0: करेगी, बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको। हम भी यही कह रहे हैं, अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो, अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिये तरीके से इस चीज को लिखा है,
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है, और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाले हैं चित्तौर का
0: भाई, नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को
1: बिल्कुल
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
1: अरे बहुत
0: है ना, और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियाँ। और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
1: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है, बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक।
1: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: मुश्किल है।
1: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
1: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
1: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामिति और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
0: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है या विवाह समारोह के अवसर है या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शामिल करें।
1: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
0: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं।

0: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं, इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं, मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना, वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
1: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे, आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
0: और कोई आसान तरीका भी हो
1: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्य प्रणाली से हुई है, और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े
1: हैं। बहुत गहरी बात है आरती, ये अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझ में आता है ना, अच्छी तरीके से जिस भाषा को जानते हैं।
1: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना? हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने तो देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है, लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है, और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी मत मन में लेकर
1: आइए। जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं, चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
0: जी। और साथ ही जो वयस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है, यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
1: क्या
0: है।
1: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा

0: कला जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक। उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल, आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ। आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती
1: जी,
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती है
1: सबका नजरिया
0: मायने रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हाँ। आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में।
0: हाँ। क्योंकि अच्छा लगा,
1: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे
0: हैं, तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
1: बिल्कुल जोड़ती है, और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शौक रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, अपने मन से सीखिए।
0: हाँ।
1: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने लगते कैसे इतनी भाषा बोल लेते हैं,
0: चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल बढ़ जाता है।
0: देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उसपे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना। आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो
1: उछल कर आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं। अगर आपने इनको छेड़ दिया,
0: बिल्कुल
1: ऐसी ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो पीले रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है।
1: हाँ।
0: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह रहे श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो उनके अंदर चीजें है ना वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार है जिंदगी में। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, 2-3 भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है। हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है। और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है। और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
0: भाषा है,
1: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
0: अगर आपको वो भाषा नहीं आएगी

0: ये तो अगर आपको कहीं बाहर जाना हाँ. है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे. हाँ.
1: चलिए आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर
0: भाषा का भी बुरी नहीं,
1: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए.
0: जी
1: एक गाना सुन लेते हैं.
0: बिल्कुल सुनते हैं.

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में

0: अजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहाँ सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका। ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद

0: स्वर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में विशेषकर पौष के महीने में बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिली जाएगी,
1: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
0: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं। चार बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 18 मई से 25 मई तक चलाए जा रहे जनजातीय गरिमा उत्सव जनभागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत आज गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तेतरडिप्पा गांव का दौरा किया। उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर गांव में संचालित विकास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। राज्य के पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल सफल रहा। 800 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से राज्य को 85% अतिरिक्त बिजली मिलेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जाँच का निर्देश दिया गया है। धनबाद जिला परिषद कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने इस अवसर पर कहा कि शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों समेत अन्य जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। रांची जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से 6 और 7 जून को रांची जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष, महिला, अंडर 11 से अंडर 19 और मास्टर्स वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे। खिलाड़ियों के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं, घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
3: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
4: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
3: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
4: क्या बात है सर, बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
3: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
4: जी
3: अल्मोड़ा हुआ।
4: अरे गजब, पहाड़ों पर।
3: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
4: जी,
3: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
4: अच्छा।
3: तब तक शुरू नहीं हुआ था
4: जी।
3: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
4: जी, जी।
3: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्ख था कि तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
4: जी,
3: वो एक अलग अनुभव था
4: जी।
3: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, हाँ। उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो,
4: हाँ, हाँ।
3: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब घूमने जाओ तो अलग बात है
4: जी।
3: लेकिन आपको रहना हो, और जो कभी रहा ना हो,
4: हाँ।
3: कभी रहा ना हो,
4: हाँ, हाँ।
3: तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था, लेकिन गुजरा। और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
4: अच्छा,
3: 86 में।
4: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था,
3: हाँ,
4: पंत जी का
3: हाँ,
4: इलाका
3: हाँ।
4: था, तो वो तमाम चीजें
3: और वो भी सब भी देखा हमने। वो पंत जी, अज्ञे जी वहां हाँ। पर है, और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
4: बिल्कुल
3: है ना? तो ये सब भी
4: उदयशंकर जी का,
3: उदयशंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
4: जी।
3: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
4: रहते कैसे
3: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं
4: जी।
3: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
4: पहाड़ों
3: में कैसे
4: बिल्कुल।
3: तो ये था
4: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई, बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे, क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
3: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो ये सपनों की नगरी थी
4: जी,
3: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में

0: अपील में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पे वो उस पैटर्न पे रहे और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम
1: बिल्कुल है? और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती थी,
0: लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो टॉपिल की थी वहां रहे और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना एंटोपिल से किंग सर्कल आना, वहां तो पैदल
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
0: तो
1: है,
0: फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
1: जी, जी।
0: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
1: जी,
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार देंगे
0: उतार
1: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
1: चरम पर
0: थी, चरम पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
1: जी,
0: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट्स जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त
1: बजाया
0: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
1: बिल्कुल,
0: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो यह सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार,
1: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी,
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
1: जी
0: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या बात है,
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ, वो
1: पेडर रोड,
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
1: जी।
0: तो मैं गया और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है
1: जी।
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था जब मुंबई में होते थे
1: जी।
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे तो ये तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात थी उनसे
1: जी,
0: हाँ, वो उनका मिल जाना, फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह वाह,
0: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना
1: जी।
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे?
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
1: ये जो जिंदगी की किताब है, वाह वाह वाह,
0: तो ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था, भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: हाँ,
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ,
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं।
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती।
1: ओह,
0: तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए
1: जी जी जी। ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
1: वो
0: उसको, हाँ, वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की किताब है ये जो जिंदगी की

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स है लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ ऐसे कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले थे, ये गजल थी वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था।
1: नबील, नबील
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी।
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे,
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: इनको
0: में
1: घंटा
0: गाया
1: था। तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त
1: हाँ,
0: ने ये बात
1: ये मेरे
0: कही।
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो बोल, ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है अजय
1: हाँ।
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहां, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई। तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो वो कहते हैं ना, फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ।

0: मिसरा गलत हो गया है, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब, उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
1: जी
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: मजरूह
1: मजरू
0: सुल्तान
1: जैसे
0: बारी साहब का
1: बड़े
0: आशीर्वाद था,
1: शायर की बात
0: है ना।
1: है ये।
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं अब।
0: जी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT के आज की कड़ी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
0: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
2: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है लगभग 2000 मिलीमीटर प्रतिवर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
2: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम दि क्रो।
2: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
3: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
4: Hello children.
5: Hello ma'am.
6: Hello ma'am.
4: Hello, hello. How are you all?
5: We are fine ma'am.
7: I am fine ma'am.
8: How are you ma'am?
4: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
5: Yes, ma'am.
7: Yes, ma'am.
4: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
5: Yes, ma'am.
8: Pets are so lovely.
4: Right, Soham.
9: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
4: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
9: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
4: Wow, that's good. And what about you, Navya?
10: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
4: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
11: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
4: Oh, that's so exciting, isn't it?
5: Yes, ma'am.
4: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
5: Yes, ma'am.
4: Can you name some birds?
7: Sparrow.
4: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
8: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
4: Yes, peacock is a colorful bird.
8: Ma'am, parrot.
4: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
12: Any guesses?
4: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
5: Yes, ma'am.
8: It will be fun.
4: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
5: As you know.
4: How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows laughed at him.
6: Oh, what a fool you are!
12: You are beautiful in black.
6: We love you.
4: So children, now listen to the same poem in a lovely song.
13: Okay.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे।
1: हुँ?
0: मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं। हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: बालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।

0: हाँ राजी बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
1: हाँ
2: देखभाल, वो कैसे?
1: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
2: अच्छा।
1: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
2: ये तो मैं जरूर करूँगा।
1: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
0: राजू बेटा
2: जी?
0: अच्छा अब घर चलें?
2: जी धन्यवाद मालिक काका।
1: अरे बेटा
0: चलो बेटा
1: जी। दे
2: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो दी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यही सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
4: दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
5: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
5: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: इसी साथ आज का ये कार्यक्रम बस यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज जमशेदपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले की अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं और केमिस्ट समुदाय ने ऑनलाइन दवा बिक्री, नकली दवाओं तथा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित तेल मिल गली में हुए चर्चित गोलीकांड में रांची पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सोनू यादव को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बीते 19 जनवरी को पंडरा इलाके में 55 लाख रुपए के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले एक सप्ताह से तेज धूप, गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे दिन के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच क्रिस्पिन छेत्री ने कल 26 सदस्यीय टीम की घोषणा की। यह टूर्नामेंट इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में गाए इस गीत को। संगीत तैयार किया है आरडी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। तो आइए सुनते हैं पराया धन फिल्म का ये नगमा।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में गाए इस गीत को। संगीत तैयार किया था आरडी वर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे साहिल लुधवान ने। और आइए आपको आगे आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गाए फिल्म शर्मीली फिल्म का ये नगमा। संगीत तैयार किया है एसडी वर्मन ने।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण एवं किसान भाई बहनों को नसीम की तरफ से आदाब जोहार नमस्कार। और आज हम श्रोता आज हम अपने कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियां और संदेश लाए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन यानी 20 मई को जो है मधुमक्खी पालन दिवस भी मनाया जाता है। ज़रूरी संदेश के साथ साथ गीत संगीत पर भी का भी हम लोग आनंद लेंगे और चर्चा होगी अपने स्थानीय उत्पादों का व्यापार कर कैसे अपने रोज़गार को जो है बेहतर बना सकते हैं। और फिर जो जिस किसान से हम लोगों ने बात की है आज, मक्का और भिंडी की उन्नत खेती कैसे की जाए, किसान का अनुभव भी हम साझा करेंगे। हम जानेंगे कि किसान जो है किस तरह से भिंडी और मक्का की उन्नत खेती करते हैं। और आखिर में जो है कुक्कुट पालन पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि बात करते हैं मधुमक्खी पालन से रोज़गार के क्या अवसर हैं। तो मधुमक्खी पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है, अपनी स्थानीय उत्पादों का व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन एक बेहतरीन जो है वो आय का ज़रिया है। इस व्यवसाय में बहुत कम पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। छोटे किसान और बेरोज़गार जो है युवक जो बेरोज़गार हैं इस व्यवसाय को जो आसानी से शुरू कर सकते हैं। खेती की उपज बढ़ती है इससे। जब मधुमक्खियां फलों पर पराग करती हैं तो इससे भी फसलों की पैदावार बढ़ती है, जैसे सरसों, सूरजमुखी, फल और सब्जियां, इनकी पैदावार 20 से 70% तक जो है बढ़ जाती है। अगर हम इसका व्यवसाय करते हैं और इसको जो है अपने क्षेत्र में इसका व्यवसाय करते हैं, इसको इसका पालन करते हैं, तो इससे भी हमारी फसलों को जो है दोहरा लाभ होता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोज़गार मिलता है, जैसे शहद निकालना, पैकिंग करना और बाज़ार में इसको बेचना। इस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को या हम अपनी आर्थिक स्थिति को जो है मजबूत कर सकते हैं। महिलाएं इस काम को घर बैठे भी कर सकती हैं, इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। मधुमक्खी से सिर्फ शहद ही नहीं मिलती, बल्कि शहद के साथ साथ मोम, राय जेली, पराग और प्रोपोलिस भी मिलता है, जिनकी बाज़ार में अच्छी मांग होती है। मधुमक्खी पालन से पर्यावरण को भी लाभ मिलता है, फूलों और पौधों का परागण बढ़ता है, जैव विविधता सुरक्षित होती है एवं खेती और प्रकृति दोनों को फायदा होता है इससे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की तरफ से भी सहायता दी जाती है, जैसे प्रशिक्षण देना, सब्सिडी देना और ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। और अंत में मुख्यमंत्री मधुमक्खी पालकों के लिए कि वह नेशनल बी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस व्यवसाय को जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये तो थी मधुमक्खी पालन और उसके फ़ायदे और इससे मिलने वाले रोज़गार के बारे में। तो इस जानकारी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, सुनते हैं कुछ प्यारा सा संदेश और कुछ गीत संगीत का मज़ा लेते हैं।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
3: फीस तो देखो
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
4: वो कहाँ है
5: मिठाई?
6: RBI कहता है
7: तरह से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अभी हम जरूरी संदेश हम सुन रहे थे, अब आते हैं स्थानीय उत्पादों का व्यापार और कैसे जो है इसको मजबूत करें और इससे कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, इस पे जो है बातचीत करते हैं। यह उत्पादन जो छोटे शहरों, गांवों, मोहल्लों, घरों और समूह के लिए में किए जाते हैं, इन्हें स्थानीय उत्पादन कहा जाता है। जैसे शहद हो गया, अचार हो गया, हस्तशिल्प हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, बांस की वस्तुएं हो गई, मसाले हो गए, दूध हो गए, दूध उत्पादन वगैरह। अगर ये सब चीज़ें, ये सारी वस्तुएं उत्पादन अगर हम करते हैं तो इसकी पैकेजिंग करके और इसको बेहतर तरीके से करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इसमें यह कि जो लोकल उत्पाद जो होता है, जैसा भी हमने कहा कि इसको कैसे करके अपने रोज़गार को जो है बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें यह कि स्थानीय उत्पादों का व्यापार करके रोज़गार पाने के तरीके, छोटे स्तर से शुरू करें, अच्छी पैकिंग करें, बाज़ार में बाज़ार की मांग को समझें, ऑनलाइन बिक्री करें, सहायता समूह बनाकर व्यापार करें, सरकारी योजनाओं का लाभ लें, गांव में रोज़गार बढ़, इससे क्या है, गांव में रोज़गार बढ़ता है, बेरोज़गारी कम होती है, आय बढ़ती है और पलायन की जो समस्या होती है वो कम होती है, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, आय बढ़ती है। इससे अगर हम जो भी सुविधा, जो भी सहूलियत हमारे पास मौजूद है, उन सहूलियत का, उन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए हम अगर प्रयास करें और जानकारी रखें कि इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, जो हमारे लोकल उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, तो हम जो है अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अनुभव के की कमी की वजह से या जानकारी के अभाव की वजह से बहुत सारे काम जो है हम नहीं कर पाते हैं और हम, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जो भी उत्पादन हम आसपास हमारे मोहल्ले में होता है या समूह बना के हम करते हैं, उसको बेहतर तरीके से, जागरूक तरीके से अगर हम करें तो हमारी जो है जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। तो इसी जानकारी के साथ चलते हैं, प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: अभी हम प्यारा सा गीत सुन रहे थे। अब एक हम अपने श्रोताओं के लिए एक जानकारी लाए हैं। जानकारी यह है कि मक्का और भिंडी की उन्नत खेती कैसे की जाए। जानकारी दे रहे हैं हरी मातो हैं और इनसे बात किया है नसीम अहमद फलाही ने, तो सुनी जाइए बातचीत।
1: आज हम उचरिंगा बड़का चुंबा आए हुए हैं और हमारे सामने हरी महतो मौजूद हैं, जो एक वरिष्ठ और युवा किसान है। किसानी के क्षेत्र में ये अपने इलाके में जो है मशहूर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि मकई और भिंडी की खेती जो है वो कैसे करते हैं। इसके अलावा भी ये खेती करते हैं, उसमें आपका अदरक हो गया और सोयाबीन की खेती हो गई, मक्का की फसल जो है ये इसे पहले एक बार ले चुके हैं, ओल की खेती करते हैं। तो आज हम सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ये मक्का और भिंडी की खेती जो है कैसे करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है अदरक भी लगा रखा है, अदरक के बारे में भी हम जो है बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद सर।
1: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दें।
2: मैं हरी महतो, मेरा घर बड़का चुंबा पंचायत मांडू रामगढ़ का रहने वाला हूं और मैं बहुत दिनों से खेती कर रहा हूं। मैं इसे इंटर का पढ़ाई तक कंप्लीट किया हूं आर्ट्स से, और उसके बाद 1994 से हम खेती से जुड़े हैं।
1: खेती को आपने अपना व्यवसाय क्यों चुना?
2: सर देखिए, अगर हम नौकरी करते हैं तो उसके लिए हमको और पैसा खर्च के और पढ़ाई करना पड़ता, परंतु जैसे हम पढ़ाई खत्म किए, इंटर किए, उसके बाद शादी हो गया और शादी के बाद काफी खर्च बढ़ जाता है और उसमें हम लोग खर्च करने में मुनासिब नहीं समझ रहे थे, इसलिए हम लोग खेती में जुड़ गए।
1: घर में कितने परिवार हैं? क्या वो खेती में जो है, खेती गृहस्थी में आपका सारा परिवार आपके साथ है?
2: मेरा घर में 10 परिवार है, भाई लोग, हम लोग 3 भाई हैं, बाकी उसका सब परिवार लोग है। और खेती में केवल मात्र मेरा 2 भाई हम लोग जुड़े हुए हैं, एक हम और मंझला भाई, और खेती बहुत अच्छा से करते।
1: आप अपने खेत में मक्का और भिंडी लगाए हुए हैं, तो मक्का जो है आप कब लगाए थे?
2: मक्का हम लगाए थे होली के बाद तुरंत लगा दिए थे
1: जी,
2: और धनकट्टी जैसे खत्म हुआ उसको 1 महीना का रेस्ट दे दिए खेत को, उसके बाद हम तुरंत जोते और तुरंत मक्का लगा दिए। तो मक्का हम अभी बेच चुके हैं, 1 महीना हो गया बेचा हुआ।
1: अच्छा,
2: भुट्टा हम बेच दिए।
1: ये आप उसी खेत में आप दूसरी बार?
2: हाँ, उसी खेत में दूसरी बार हम अभी जो मक्का लगाए हैं उसी के बगल खेत में, वो अभी धन बाल दे रहा है और उसका बाली निकल रहा है, और फिर उसके बगल में भी 2 फीट का हो गया है मक्का।
1: यानी आपका खेत जो है कभी खाली नहीं रहता?
2: मेरा खेत खाली कभी नहीं रहता है। इससे पहले भी 2 साल पहले हम 3 साल पहले सोयाबीन का खेती करते थे, बदल बदल के हम लोग खेती करते रहते हैं। एक खेत को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, अब दूसरा खेती जरूरी करता है का है, ताकि उसमें उपजाऊ उर्वरक बढ़े और खेती भी हमारा बढ़े।
1: यानी आप फसल चक्र का पालन करते हैं?
2: जी जी जी, फसल चक्र का पालन हम लोग करते हैं।
1: इसे मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी बनी रहती है और फसल का उत्पादन भी बढ़िया रहता है।
2: जी जी।
1: कौन सी मक्का का जो है वैरायटी आप लगाए हैं?
2: हम लोग VNR का लगाए थे।
1: यही क्यों लगाते हैं?
2: VNR का बदल बदल के लगाते हैं। VNR इस साल लगाए, अगला साल हम VNR नहीं लगाएंगे।
1: अच्छा,
2: कि इस साल देखे उसमें बाली 1 निकलता है।
1: अच्छा,
2: और दूसरा किस्म का बाली देखते थे कि एक पेड़ में, एक पौधा में 2 बाली 3 बाली निकलता था, लेकिन इसमें तो VNR में देखे कि 1 बाली निकलता है, दूसरा बाली निकलता ही नहीं है, इसलिए इस बार हमको नुकसान हुआ है।
1: इसकी जुताई कोड़ाई कैसे करते हैं?
2: पहले हम लोग गहरी जुताई कर देते हैं, उसके बाद 1 सप्ताह छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर उसको जुताई करते हैं रोटावेटर से
1: जी,
2: उसके बाद खेत को पूरा प्लेन कर देते हैं, उसके बाद उसको बना देते हैं क्यारी, डोंगर फान देते हैं। अच्छा। और उसमें हम साइड में नहीं लगा के नीचे लगाते हैं,
1: डोंगर में यानी जो ऊपर जो होता है टीला टाइप का जो होता है, हाँ, उसमें नहीं लगाते,
2: उसमें नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो चिड़िया और कबूतर चुग लेता है उससे।
1: अच्छा।
2: ऊपर में चिड़िया और कबूतर चुग लेता है, और जब हम नीचे डोंगर में लगाते हैं तो चुगने का चांस नहीं रहता है, और वह बीज खराब भी नहीं होता है, वो जितना हम लगाए बीज उतना निकलेगा, फिक्स है।
1: सिंचाई जब करते होंगे तो पानी जमता होगा तो बीज तो सड़ जाती होगी?
2: नहीं, वो वैसा ही उसी के मुताबिक हम लोग सिंचाई भी करते हैं। एक बार सिंचाई करके एकदम 15 दिन छोड़ देते हैं, तब तक वो बीज पूरा निकल जाता है।
1: अच्छा,
2: सड़ेगा ही नहीं।
1: और जो मेड टाइप का जो होता है उस पर आप क्या लगाते हैं?
2: उस पर कुछ नहीं लगाते,
1: कुछ नहीं लगा।
2: नहीं, मकई में लगाएंगे तब तो फिर गाढ़ा हो जाएगा, तब तो फिर मकई का हमारा
1: नहीं होगा,
2: नहीं हो पाएगा बढ़िया से।
1: तो अभी आप जो है कोहड़ा लगाए हुए हैं?
2: कोहड़ा लगाए हैं, कोहड़ा के कोहड़ा को पूरा खेत में लगा दिए हैं, और उसका आरी जो होता है ना उसमें मक्का लगा दिए हैं।
1: अच्छा, इसमें आरी में मक्का लगा?
2: आरी में मक्का लगा है।
1: और जब अकेले लगाते हैं तो दोंगा में
2: लगाते हैं? दोंगा में लगाते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात हमारे श्रोताओं को जो है दी, और इससे एक जानकारी हुई कि भाई जो है जब आप सिंगल मकई लगाते हैं, सिर्फ मकई लगा रहे हैं तो आप दोंगे में लगाइए, और जब कोई फसल साथ में लगा रहे हैं तो आप जो आरी होती
2: है, हाँ।
1: क्यारी जो होती है उस पर आप लगाते हैं। सिंचाई की व्यवस्था है आपकी?
2: सिंचाई मेरा हम सोलर लिए हुए हैं।
1: सोलर लिए?
2: हाँ, सोलर आज से नहीं, हमको लगता है 10-12 साल हो गया कुसुम योजना से सोलर लिए हैं।
1: अच्छा,
2: और कृषि विज्ञान केंद्र से हम 2014 से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम प्रशिक्षण भी काफी लिए हैं।
1: अच्छा,
2: और बाहर जाके भी प्रशिक्षण लिए हैं। एक बार हम गुजरात गए थे जिसमें मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे,
1: मुख्यमंत्री
2: थे, अभी तो प्रधानमंत्री है, उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थे गुजरात का। उसके बाद हम लोग मेघालय भी गए हैं, वहाँ भी प्रशिक्षण लिए हैं। प्रशिक्षण लेने में हम कमी नहीं किए। उड़ीसा भी अगर हाल फिलहाल में ही गए थे। केला का भी, केला और पपीता का भी हम सोच रहे हैं एक आध साल उसका भी करेंगे खेती। काहे कि हम केला और पपीता का इस बार हम प्रशिक्षण लेकर के आए हैं उड़ीसा से।
1: केवीके में आपकी बहुत चर्चा होती?
2: देखिए, केवीके में वैज्ञानिक लोग जो है ना हमको काफी सपोर्ट करते हैं, चर्चा में इसलिए है, काफी हमको सपोर्ट करते हैं और हम लाइक भी उन लोग को करते हैं
1: जी।
2: काफी अच्छा, अच्छे लोग हैं। राघव सर भी थे, वो भी लाइक करते थे हमको। और जो जो प्रशिक्षण नया नया होता था, जैसे मशरूम का हुआ, उसके बाद मशरूम का भी हम लिए हैं, जिसका सर्टिफिकेट भी है। जितना हम प्रशिक्षण किए हैं सबका सर्टिफिकेट है। हमको लगता है अभी 60-70 सर्टिफिकेट होगा मेरे पास, जो प्रशिक्षण लिए हैं बाहर जाके।
1: आप खेती बाड़ी में प्रशिक्षित हैं, तो क्या अपने जो आपके आसपास में जो किसान है, क्या उनको भी आप प्रशिक्षण देते हैं क्या?
2: एकदम एकदम, हम तो महीना में कम से कम 10-20 महिला या जेंट्स किसान को बैठा के और समझाते हैं
1: जी।
2: ऐसे 2-4 बार तो अभी हम फिलहाल में 3 बार हो गया पंचायत भवन में बैठा के मुखिया जी के साथ में
1: जी, जी।
2: किसानों को बैठा के और प्रशिक्षण भी दिए हैं।
1: ये जो आप मक्का लगाए हैं तो कितने दिनों में अब ये मक्का तैयार हो जाएगा?
2: मक्का जो हम लगाए हैं वो हमको लगता है 20 दिन में अभी तैयार हो जाएगा।
1: 20 दिन में तैयार हो जाएगा,
2: 20 दिन में तैयार हो जाएगा।

0: भुट्टा हम उसको निकाल देंगे, हम बीज के लिए मक्का नहीं रखते हैं, भुट्टा ही बेच देते हैं, काफी हमको फायदा इससे मिलता है।
1: कब लगाए थे इसको?
0: इसको लगाए थे हम अभी लगभग होली के बाद लगाए थे।
1: अभी तो गर्मी का समय है, इसमें कीड़े मकोड़े?
0: कीड़ा मकोड़ा लगता है, उसका दवा डालते हैं।
1: डालते हैं?
0: हाँ, दवा तो रासायनिक दवा डालते हैं।
1: बीमारी क्या होती है इसमें? इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है?
0: गभ्भा में बीमारी लगता है, वो जो गभ्भा जो निकलता है ना, कीड़ा मोटा कीड़ा रहता है, वो उसी को खा जाता है।
1: गभे को खा जाता है?
0: गभे को खा जाता
1: है, फूल जो बनता है।
0: हाँ, फूल बनता है, वो बनने नहीं देता है, पौधा को छोटा रखता है, पूरा पत्ता खा जाएगा वो, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं।
1: तो कैसे पता चलता है कि जो है इसमें कीड़ा लग गया है?
0: कीड़ा लग गया, वो छेदा छेदा होता है और वो लाइटिंग जो करता है ना, उसका उजला उजला निकलता है, वो हम लोग देखते हैं। हाँ, सफेद सफेद।
1: तो फिर जैसे आप देखे उसका
0: उपचार कर देते हैं।
1: कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं?
0: हम लोग करंट दवा का उसमें प्रयोग करते हैं,
1: करंट पंप।
0: हाँ, अगर उससे नहीं माना तब हम लोग नीम का पत्ता को सिझा देते हैं और उसको डाल देते हैं उसमें।
1: सिझा के पानी, गर्म पानी या ठंडा करके उसको?
0: हाँ, बस नीम के पत्ता से ही मान जाता है। और उसके बाद अभी हम लोग नैनो यूरिया का, इस बार हम नैनो यूरिया का उपयोग किए। यूरिया जो पहले हम लोग छींटते थे ना, उसका उपयोग ना करके हम लोग स्प्रे करते हैं नैनो यूरिया का। अच्छा। जिससे फसल में काफी हरापन रहता है।
1: अच्छा, ये देखते हैं कि ज्यादातर आमतौर पर जो है लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी जी,
1: जैविक खाद का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं?
0: जैविक खाद का उपयोग हम भी करते हैं
1: जी।
0: हम तो अभी ऑल लगाए हैं, अदरक लगाए हैं, हल्दी लगाएंगे, अभी लगाए नहीं है
1: जी।
0: और उसको जो टोटी बोलते हैं कंदा, वो भी हम लगाए हैं, उसमें जैविक खाद हम डालते हैं। कई कुछ उसका उपयोग हम भी करते हैं, खाते हैं, इसीलिए हम उस पर जैविक खाद का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद उसमें नहीं डालते हैं।
1: यानी किसान जो है व्यवसाय के दृष्टिकोण से रासायनिक खाद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको बेचना होता है।
0: जी जी,
1: और अपने इस्तेमाल के लिए जो है जैविक खाद का इस्तेमाल,
0: जैविक खाद का इस्तेमाल
1: करते हैं।
0: और इस बार जो हम भुट्टा बेचे वो जैविक खाद का ही था, रासायनिक खाद उसमें हम नहीं डाले थे।
1: तो जैविक खाद में और रासायनिक खाद के उत्पादन में कुछ फर्क महसूस होता है?
0: अभी तो थोड़ा सा जैविक खाद में थोड़ा सा पड़ता है, नुकसान होता है, नहीं बताया अभी।
1: लेकिन कि भुट्टा में के लिहाज से जो है कौन बढ़िया है?
0: जैविक खाद,
1: जैविक खाद बढ़िया,
0: जैविक खाद बहुत पौष्टिक।
1: तो थोड़ा सा नुकसान ही से ही हमारे जो है श्रोता है उनको चाहिए कि भाई ज्यादा जैविक खाद का इस्तेमाल करें, उससे क्या है कि मिट्टी की उर्वरता भी और फसल की जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहती है।
0: बनी रहती है जी।
1: ये तो हो गई मक्का की बात, अब चलते हैं थोड़ा सी भिंडी के उत्पादन पर ही बात कर लेते हैं, उसकी खेती के बारे में। भिंडी आप कब लगाए थे?
0: भिंडी तो सर मकई के साथ ही लगाए हैं होली के बाद
1: जी।
0: कई खेत हमारा पहले तैयार नहीं हो पाया था, खेत हम इधर उधर लगाते लगाते थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो भिंडी ठंडा में बीज अंकुरित भी जल्दी नहीं होता है, वो सड़ने का चांस रहता है, इसलिए थोड़ा सा उसको लेट किए। उसके बाद भिंडी लगाए, वो तो अभी हम निकाल रहे हैं, एक महीना से हम बेच भी रहे हैं बाजार में।
1: भिंडी का ऐसी फसल है जो लंबे समय तक जो है फसल देती है।
0: जी जी, अभी अभी हम भिंडी जैसे लगा दिए, इसको हम जब तक रोपा चालू नहीं करेंगे तब तक उस खेत में वो रहेगा, और उसको काट के सीधा सीधी हम ऐसी धान ही लगाएंगे उस पर।
1: तो ये भिंडी आप कब तक इसकी फसल आप लेंगे?
0: रोपा तक लेंगे, उसके बाद फिर जैसे बारी तैयार है, हमारा टाड़ जैसा होता है बारी, उसमें हम भिंडी लगाएंगे इस बार। इस बार वो दूसरा कोई फसल नहीं लगाएंगे।
1: अच्छा,
0: सतपुतिया लगाएंगे जो जितिया में निकलता है, उसमें काफी पैसा मिलता है।
1: जी जी जी,
0: सतपुतिया लगा देंगे और भिंडी, भिंडी में काफी पैसा मिलता है। अभी तो हमारा 20-25 रुपए बिक रहा है।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन इसके बाद बरसात में जैसे होता है
1: वो तो फिर
0: 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए बेचते हैं,
1: महंगा होना।
0: और ठंडा हो गया तो 150 रुपए किलो बिकता है।
1: हाँ,
0: ठंडा के सीजन
1: में तो उत्पादन कम हो जाता है,
0: कम हो जाता है, इसलिए
1: उसका दाम भी जो है वो ज्यादा हो जाता है,
0: ज्यादा हो जाता है।
1: कौन सी वैरायटी आप लगाए हैं भिंडी की?
0: अभी तो हम VNR का ही लगाए हैं, मालिका पहले लगाते थे।
1: अच्छा,
0: तो थोड़ा सा देखे कि अगला बार मेरा कम हुआ था उत्पादन।
1: ये भिंडी कब लगाए थे?
0: VNR अभी हम होली के बाद लगाए हैं।
1: होली के बाद लगाए, एक फसल एक बार तोड़ चुके हैं?
0: हाँ, एक बार नहीं, एक महीना से तोड़ रहे हैं।
1: एक महीना से तोड़ रहे हैं,
0: एक महीना से तोड़ रहे हैं।
1: अभी जब तक रोपा शुरू नहीं होगा तब तक
0: तोड़ेंगे।
1: तो ये कि व्यवसाय के उससे देखें तो भिंडी ज्यादा लाभदायक?
0: हाँ, लाभदायक भिंडी है।
1: कहे कि जो है तोड़ते जाइए वो अपने
0: निकलते जाता है, बढ़ते जाता है,
1: बढ़ते जाता है।
0: वो छोटा जैसे 6 इंच का हुआ, वो फल फूल उसका निकलना चालू हो जाता है, और उसी समय से टूटना चालू हो जाता है, और जब तक 6 फीट 7 फीट नहीं हो जाएगा तब तक वो फलते रहता है।
1: तो ये किसानों के लिए ये ज्यादा मुनाफे वाला?
0: बहुत मुनाफा है, लेकिन तो सरकारीकरण था तो वैकेंसी वगैरह निकलता था, लेकिन अब वैकेंसी वगैरह पता नहीं चलता।

0: है, प्राइवेट कंपनी थोड़ा सा निकाला वैकेंसी दो चार दिन में समाप्त हो गया, उसमें युवा लोग को नौकरी नहीं मिल पाता है ज्यादा, और युवा लोग को सीधा सीधी खेती की ओर अग्रसरित होना चाहिए।
1: जिनके पास जमीन नहीं है वो लीज पर भी लेके खेती,
0: हाँ,
1: कर सकते
0: हैं। लीज पर आजकल तो बहुत टमाटर लोग देख रहे हैं, हजारीबाग तरफ बहुत लीज लेकर के टमाटर लगा रहा है, तो भिंडी लगा रहा है। हमारे यहाँ बुमरी पंचायत में
1: जी,
0: अब जाइएगा तुषार बेदिया है वो
1: जी।
0: मेरा, हम FPO भी चलाते हैं, उसमें मेरा BOD मेंबर भी है। वो अगला बार तरबूज लगाया था तो 14 जून को जो बारिश हुई थी और ओला वृष्टि हुआ था, उससे उसको काफी नुकसान हुआ, तो हम ही जाके उसको सलाह दिए और प्रशिक्षण दिए कि ठीक है, एक बार नुकसान हो गया तो उस बार पूरा जोत खेत जोत दिया, नुकसान हो गया, तरबूज खराब हो गया तो जोत दिया, उसके बाद शिमला मिर्च लगा दिया
1: जी।
0: जिससे उसको बरसात में काफी मुनाफा हुआ और उसमें टमाटर भी बेचा, अभी भी उसका टमाटर स्ट्रॉबेरी इस बार काफी मात्रा में बेचा, अभी खीरा भी लगाया था, कद्दू लगाया था, कोहड़ा लगाया था, अभी उसका खेत में पूरा सब्जी भरा हुआ है।
1: तो ये थे हरि महतो बड़का चुंबा से कर रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये बातचीत पसंद आई होगी सब। और हरि जी, आपने अपने बहुमूल्य समय जो है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: तो इसी जानकारी के साथ जो अभी बात हो रही थी मक्का और भिंडी की उन्नत खेती के बारे में, जानकारी देते हरि महतो और बात कर रहे थे नसीम मोहम्मद। तो इसी जानकारी के साथ मुझे कार्यक्रम खेती बाड़ी से इजाजत दीजिए, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक लोक कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं, आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेला भारत टेक्स 2026 का आयोजन इस वर्ष 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने आज आगामी वस्त्र प्रदर्शनी के अनुरूप भारत टेक्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुश्री राव ने कहा कि मोबाइल ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खोज के जरिए प्रासंगिक उत्पादों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टॉल के स्थानों को तलाशने में विक्रेताओं और प्रदर्शकों के लिए मददगार होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आए अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने आज रांची सिविल कोर्ट स्थित PMLA की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। आकाशवाणी डाल्टनगंज नियंत्रण कक्ष के तकनीशियन श्री मनोज कुमार का कल उनके पैतृक स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक मृत्यु से आकाशवाणी रांची और डाल्टनगंज के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और ईश्वर से यह कामना की उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवानी सुन रहे सभी दोस्तों को आपकी दोस्त वंदना अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, गर्मी काफी बढ़ गई है और ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो अभी जो तापमान है बहुत ही ज्यादा है और इसकी वजह से लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कड़ी धूप में बाहर हम ना निकले, और जब भी अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो भर पेट खाना और पानी पी के निकलना चाहिए। साथ ही इस मौसम में हल्के और सूती कपड़े पहनने चाहिए। जब भी घर से बाहर निकले तो गमछा, टोपी या धूप का चश्मा उपयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ खाली पेट बिल्कुल ना रहे, और जब बाहर काम करते हैं तो छाता का उपयोग जरूर करें। और इस मौसम में खास करके खाना पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में हल्का भोजन करना चाहिए और ऐसे भोजन करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा पर्याप्त हो। और इस समय तो मार्केट में तरबूज, खीरा, नींबू, संतरा और भी ऐसे कई सारे विकल्प होते हैं जिनके सहारे हम खा के अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम गर्मी से बच सकते हैं। और थोड़ी राहत होती है जब शाम होता है, तो धीरे धीरे थोड़ी गर्मी कम लगती है और सभी को राहत लगता है। तो हम कार्यक्रम में आगे आपसे और भी बातें करेंगे, मगर आइए अभी सुनते हैं इस गीत को।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: दोस्तों, आज के बदलते परिवेश में हर युवा अपने आप को स्मार्ट और कूल देखना पसंद करता है, और इस होड़ में कई बार होते हैं जो युवा होते हैं गलत राह पकड़ लेते हैं, और जो ये युवा जो होते हैं वो सभी एक दूसरे को देख के उनके जैसे बनने या नकल करने में रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है जो कई युवा होते हैं जो अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, और कई बार युवा गलत चीज़ों में फंस जाते हैं और जिससे हमारा कैरियर बर्बाद हो जाता है या कैरियर पर असर पड़ता है। और आजकल युवाओं में जो गलत आदत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वह है नशे की लत, क्योंकि नशे की जो प्रवृत्ति होती है ये एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। साथ ही हमारे सपने और परिवार की खुशियों को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, नशे से दूर रहकर ही हम अपने उज्जवल, स्वस्थ और सुंदर भविष्य की नींव रख सकते हैं। दोस्तों, नशे की जो दलदल से बाहर निकलने के लिए और एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी हमें अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आना देना चाहिए। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।

0: क्योंकि योग जो होती है वो हमारी मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही हमें अच्छे संगत वाले सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। ऐसे दोस्तों और ऐसे माहौल से हमें दूर रहना चाहिए जो हमें नशे की ओर प्रेरित करे। साथ ही किसी भी मानसिक तनाव या कोई भी समस्या हो तो अपने परिवार से अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात करना चाहिए क्योंकि हर समस्या का हल होता है। दोस्तों एक सुंदर भविष्य का निर्माण हमारे आज के फैसले निरंतर प्रयासों और सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए हमारा स्पष्ट लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। समय का सही प्रबंधन और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। हमें अपने जीवन को एक दिशा देने की जरूरत होती है क्योंकि दिशाहीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि हमें आने वाले सालों में महीनों में हमें क्या करना है उन बातों को हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, हमेशा हमें इन बातों को दोहराते रहना चाहिए। कल की चिंता में आज को खराब या बर्बाद बिल्कुल नहीं करें क्योंकि आज ही में हम अपने आने वाले कल का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों निरंतर सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। तकनीकी और कार्यक्षेत्र में बदलते दौर में हमेशा हमें अपडेट रहने की जरूरत है। नई स्किल्स सीखने चाहिए, किताबें पढ़े, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। और असफलताएं जो है वो जीवन का हिस्सा होता है, उनसे डरने के बजाय हमें उन गलतियों से सीखने की जरूरत होती है ताकि हम आगे वह गलती नहीं दोहरा सकें ना दोहराए। तो हम आगे और भी आपसे बातें करेंगे, मगर आइए सुनते एक भेंट वार्ता लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में कैरियर। भेंट वार्ताकार है कुलदीप प्रसाद और उनसे बातें कर रहे हैं अशोक कुमार।
1: श्रोताओं आज के युवावाणी कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है केवी ओवेंस कॉलेज के बीएमएलटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर कुलदीप प्रसाद जी को। तो सर आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार मुखातिब है, बहुत बहुत स्वागत, साथ ही साथ नमस्कार। सर ऐसा है कि आप बीएमएलटी लैब टेक्नीशियन के आप प्रोफेसर हैं, तो पहले यह बताया जाए कि ये बीएमएलटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
2: बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी।
1: अच्छा जी, तो इसमें आप छात्रों को ट्रेन करते हैं, तो इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें आज के विषय पर हम आना चाहेंगे, तो श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में हम सर से चर्चा करने वाले हैं कि लैब टेक्नीशियन कैसे बनने जाए और लैब टेक्नीशियन जब आप बनते हैं तो इसमें छात्रों का करियर की क्या क्या संभावना है। जाहिर सी बात है लैब टेक्नीशियन में करियर की ढेर सारी संभावना है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, कौन लोग इस लैब टेक्नीशियन के कोर्स को कर सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है, कितनी अवधि का ये कोर्स होता है और फिर इसके सिलेबस क्या होते हैं, इन्हीं सब बातों से विस्तार पूर्वक हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बताया जाए, पहला जो मेरा सवाल है ये कुलदीप सर कि ये जो कोर्स है कौन लोग कर सकते हैं इसको, इसके बारे में बताएं।
2: इसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे करेंगे जी। इसमें पीसीएम या पीसीबी दोनों बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
1: हाँ।
2: फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये दोनों बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
1: हाँ।
2: और हर एक इंस्टीट्यूशन अपना अपना कुछ क्राइटेरिया रखता है कि मिनिमम परसेंटेज क्या होनी चाहिए। जैसे मिनिमम अभी जैसे केवी ओवेंस कॉलेज में अगर बीएमएलटी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो मिनिमम 65% रखा गया है। जो बच्चे 65% जैसे जैक के अगर होते हैं तो उसका एडमिशन एक नियमता अनुसार उसका एडमिशन हो जाता है।
1: हाँ।
2: और अगर हम
1: सीबीएसई बोर्ड क्या,
2: अगर सीबीएसई के भी है तो मिनिमम जैसा 65% ही रखा गया।
1: हाँ।
2: बट अगर वो 65 से अबव है तो उसके लिए बेटर है, मिनिमम 65% रखा गया। और अगर हम सेमेस्टर वाइज की अगर हम बात करते हैं तो बीएमएलटी ये 3 ईयर डिग्री कोर्स है
1: जी।
2: टोटल इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं।
1: हाँ।
2: प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ्स का है।
1: अच्छा।
2: जिसमें अलग अलग जैसे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं बीएमएलटी का तो इसमें लेबोरेटरी के जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सेरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, कई सारे इसमें सब्जेक्ट हैं जो बीएमएलटी में यानी 3 ईयर डिग्री कोर्स में इंक्लूड किया गया है। और इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है।

0: कहीं अभी किया गया है,
1: अच्छा
0: अभी उसमें अभी उसका गाइडलाइन आएगा तो उसमें चेंज किया जाएगा। अभी जैसे जनरल कोर्सेस में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी जो चेंजेस जो भी हुआ है जनरल कोर्सेस में, और
1: हाँ
0: वोकेशनल में अभी हम लोग को उसके लिए अभी कुछ गाइडलाइन नहीं मिला है, लेकिन अगर उसमें भी गाइडलाइन अगर आ जाता है तो हम लोग को उसमें चेंजेस कुछ करना होगा।
1: करना होगा,
0: अभी
1: करना
0: अभी फिलहाल अभी हम लोग को जो बैचलर की डिग्री की जो पढ़ाई होगी, बैचलर डिग्री की
1: वो
0: बीएमएड की,
1: थ्री
0: वो
1: ईयर।
0: 3 ईयर डिग्री है जनरल कोर्सेस।
1: चलिए मान के चलिए ये 3 इयर्स के लिए सेमेस्टर वाइज जो है सो इसमें बच्चों को नामांकन कराना पड़ता है,
0: जी
1: एडमिशन कराना पड़ता
0: जी जी
1: है। तो पर सेमेस्टर इसमें कुल कितना खर्चा पड़ता है, ये अनुमानित
0: पर
1: राशि बताएं हमारे छात्रों को।
0: सेमेस्टर ट्यूशन फी 15,000 है,
1: अच्छा
0: और उसके एक्स्ट्रा उसके अलावा जैसे हम बात कर सकते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म का अलग चार्जेस लगता है
1: हाँ
0: और एडमिशन का अलग है, ये सारे, लेकिन अगर ट्यूशन फी 15,000 पर सेमेस्टर, और एक अप्रोक्सीमेटली
1: एक
0: अगर
1: दो हजार
0: हम,
1: रुपये मार के चलिए
0: हाँ,
1: और
0: तो
1: उसमें
0: टोटल 6 सेमेस्टर में 90,000 कंप्लीट आपका ट्यूशन फी।
1: आप लेके चल सकते हैं।
0: अगर हम एक एवरेज बात करते हैं तो लगभग वहां,
1: और अच्छा है 1 लाख में इतना अच्छा करियर मिलता है। अच्छा ये कहा जाए कि प्लेसमेंट की क्या सुविधा है, जैसे 3 साल का है यहाँ पे प्लेसमेंट की भी सुविधा होती है, कैंपस सिलेक्शन वगैरह भी।
0: अगर हम कैरियर वाइज अगर हम बात करें तो ये जो बैचलर बीएमएलटी की पढ़ाई है ये सारा टेक्निकल पढ़ाई है।
1: जी
0: बच्चों को एक अच्छा ऑफर मिलता है कि हम अपने अंदर एक स्किल डेवलप करें,
1: हाँ जी
0: और आज के डेट में अगर हम स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हम कहीं भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: जी
0: मेरे अंदर वो कैपेसिटी हो जाता है, हम बच्चों के अंदर वो कैपेसिटी हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं भी उस चीज को यूटिलाइज कर सके, और वो खुद के एक एक बोलते हैं ना कि हम लोग अपने हाथ का हुनर हो। अगर हम कैरियर वाइज अगर हम इस तरह से बात करें और भी, तो हम लोग सबसे पहले अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे वैकेंसी आते हैं। जैसे
1: हाँ
0: अभी अभी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अभी सिविल सर्जन, अभी सदर हॉस्पिटल का भी वैकेंसी निकला हुआ है, कई
1: हाँ
0: सारे
1: जी
0: डिपार्टमेंट का है।
1: जी
0: अभी जैसे उसमें से एक लैब टेक्नीशियन भी है,
1: हाँ
0: एक डीआरडीओ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फॉर्म आया हुआ है, उसका भी है। तो कई सारे वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आते रहते हैं, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का वैकेंसी आता है। दूसरी चीज है कि अभी एक एनआरएचएम के थ्रू से भी डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन की कई सारे वैकेंसीज
1: जी
0: आते रहते हैं,
1: हाँ
0: उसमें कई बच्चे अपना योगदान देते हैं। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो इंडिया लाल लेबोरेटरी है, जैसे हम अगर हम लाल लैब की बात करते हैं,
1: हाँ
0: एसआरएल,
1: हाँ
0: पैथ केयर, रनवैक्सी, थायरो केयर, तो डिफरेंट लेबोरेटरी है ऑल ओवर इंडिया में जो अपनी कई सारे टेस्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के मामले में
1: हाँ
0: कई सारे सुविधा देते हैं, और उसमें बच्चों को एक अच्छा ऑफर मिलता है जॉब के लिए।
1: जी
0: क्योंकि जब बच्चे 3 साल का कोर्स करके निकलते हैं तो उसके अंदर एक तो बच्चे को बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाता है,
1: हाँ
0: और 3 साल में उसको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है
1: जी
0: इंस्टीट्यूशन के थ्रू से कि वो कहीं भी जाकर के उस चीज को आराम से यूटिलाइज कर। हम प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट
1: हाँ
0: सेक्टर में
1: ढेर
0: भी
1: सारे
0: है,
1: अपॉर्चुनिटी
0: और
1: जी
0: अगर हम खुद का अगर हम लैब ऑर्गेनाइज अगर
1: जी कि
0: तो
1: खुद का अगर पैथोलॉजी सेंटर ये पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 वर्ष के उपरांत खोलना चाहते हैं तो उसके क्या क्या प्रोसेस
0: अगर बच्चे खुद का
1: आवश्यकता
0: लैब
1: क्या
0: अगर
1: होती है।
0: ऑर्गेनाइज करना चाहें तो सबसे पहले ये देखना रहता है कि बच्चे को कॉलेज से जो 3 साल की पढ़ाई करके निकलते हैं, लेकिन उसके पास एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है,
1: हाँ
0: और वो एक्सपीरियंस जनरली 3 साल के दरमियान में सेमेस्टर 4 में और सेमेस्टर 6 में जॉब ट्रेनिंग होता है,
1: जी
0: जो हम लोग हॉस्पिटल या फिर कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को जॉब ट्रेनिंग कराया जाता है।
1: हाँ
0: तो एक जब प्रैक्टिकल कॉलेज में, जब कॉलेज के लैब में जब कराया जाता है तो एक हम लोग जनरली वो एक नॉर्मल सैंपल को हम लोग यूज करते हैं, बट अगर हम जॉब ट्रेनिंग में हम लोग बच्चे को ये सिखाया जाता है कि हम लोग कमर्शियल लैब में पेशेंट को कैसे हैंडल करना है।
1: जी
0: हम लोग वहां पे मल्टीपल स्पेसिमेन को यूज करते हैं, मल्टीपल पेशेंट्स का हम लोग सैंपल को वहां पर टेस्टिंग करते हैं, तो एक हमको स्टूडेंट्स को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है
1: जी
0: कि हमको कमर्शियल लैब में काम कैसे करना है, रिपोर्टिंग करना है कैसे करना है, पेशेंट के साथ डील कैसे करना है। अगर हम बैचलर डिग्री की पढ़ाई कर लेते हैं, स्टूडेंट्स कर लेते हैं बैचलर डिग्री पढ़ाई, पढ़ाई करने के बाद अगर वो 3 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस किसी अच्छे लेबोरेटरी से, वहां से अगर वो एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके बाद अगर वो खुद का लैब अगर ऑर्गेनाइज करना चाहे तो एक पैथोलॉजिस्ट के के साथ में वो मिल करके एक जैसे अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हमको ऑर्गेनाइज करना है तो हमको लैब ऑर्गेनाइज करने से पहले हम

0: वो सिविल सर्जन से परमिशन लेना
1: जी जी
0: पड़ेगा,
1: हाँ
0: यानी कि परमिशन इन द सेंस कि हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा,
1: अच्छा जी
0: और दूसरी चीज है कि फिर एक हमको लेना रहता है एनएबीएल से। तो ये सारी चीजें अगर सुविधा हम अगर हम प्रोवाइड कर लेते हैं,
1: और
0: और
1: एक
0: अगर
1: एमबीबीएस डॉक्टर्स की भी
0: और
1: आवश्यकता होती
0: हाँ
1: है,
0: हम
1: जो कि वो
0: एमबीबीएस इन द
1: सैटिस्फाइड
0: सेंस,
1: करते
0: हाँ
1: हैं किसी भी
0: एमबीबीएस
1: टेस्ट
0: इन
1: में,
0: द
1: शाइन
0: सेंस,
1: करते हैं वो।
0: हाँ एमबीबीएस का मतलब ये हुआ कि जैसे एमबीबीएस इन द सेंस के जो पैथोलॉजिस्ट, यानी कि मतलब पैथोलॉजिस्ट यानी कि डीसीपी या एमडी पैथ होना चाहिए, डिप्लोमा इन
1: हाँ
0: क्लिनिकल पैथोलॉजी।
1: जी
0: तो हम एक पैथोलॉजिस्ट के साथ में मिल करके जो 10 टेक्नीशियन है, जो
1: जी
0: बीएससी एमएलटी मिनिमम डिग्री बीएमएलटी होनी चाहिए और
1: वाह,
0: एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो मिल करके हम खुद का लैब ऑर्गेनाइज अपना।
1: मतलब स्पष्ट हो चुका है कि ढेर सारी संभावनाएं हैं, करियर की संभावनाएं हैं। इस कोर्स को करने के बाद इतना है कि छात्र बेरोजगार नहीं बैठेंगे। कुछ अगर नहीं होता है तो कहीं भी किसी अच्छे कंपनी में 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके वो खुद का जो है सो अपना पैथोलॉजी सेंटर खोल करके अच्छा पैसा और शोहरत कमा सकते। ये बात आप बताएंगे कि जैसे लैब टेक्नीशियन का आपने कहा, खास तौर से केमिकल का ज्ञान होना बहुत जरूरी।
0: देखिए अगर हम उसमें केमिकल की अगर हम बात करते हैं, तो आज के डेट में अगर हम लैबोरेटरी में केमिकल की अगर हम बात करते हैं,
1: कोई भी एक टेस्ट के बारे में, जैसे मान के चलिए ब्लड का कोई भी टेस्ट है, जैसे टोटल काउंट होता है, या फिर सीबीसी मान के आप चल लीजिए, या फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे आप ब्लड का सैंपल आप लेते हैं, उसमें हर टेस्ट में कोई ना कोई केमिकल आप उसमें मिलाते हैं, तब उसका रिजल्ट आता है। सीबीसी कर रहे हैं उसमें आपको टोटल ब्लड काउंट सेल आपको काउंट करने, डब्ल्यूबीसी आरबीसी के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं और कितने दिनों के बाद वो काउंट कैसे पता करते हैं, इसके बारे में संक्षेप में बताएं श्रोताओं।
0: अगर हम सीबीसी की बात करते हैं यानी
1: हाँ
0: कंप्लीट ब्लड काउंट, तो
1: जी
0: उसमें से हम एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे टीएलसी डीएलसी यानी
1: हाँ
0: कि
1: चलिए
0: टोटल
1: ठीक है
0: लिकोसाइट काउंट और एंड
1: बिल्कुल
0: डिफरेंशियल लिकोसाइट।
1: हाँ
0: तो टोटल लिकोसाइट काउंट के लिए हम लोग एक डब्ल्यूबीसी डायल्यूटिंग फ्लूड का यूज करते हैं, जिसका फ्लूड का भी नाम एक अलग है, जैसे ड्रग्स फ्लूड्स के नाम से एक आता है।
1: जी
0: अगर हम लेबोरेटरी में खुद से उसको प्रिपेयर करना चाहेंगे, तो हम लोग उसमें जनसन वायलेट पाउडर, ग्लासियल एसिटिक एसिड
1: अच्छा,
0: एंड डिस्टिल वाटर में हम लोग उसको डिजॉल्व करते हैं।
1: इस केमिकल को खुद भी तैयार कर
0: हाँ
1: सकते
0: खुद
1: हैं,
0: से हम
1: और रेडीमेड
0: लोग,
1: भी तो आता हो उसे भी
0: हाँ
1: आप यूज
0: रेडीमेड भी आता है, कंपनी खुद
1: बराबर
0: से
1: है।
0: उसको प्रोवाइड करती है, रेडी टू यूज आता है, ड्रग्स फ्लूट के नाम से आता है। और
1: जी
0: एक अगर हम लोग लेबोरेटरी में, जैसे हम लोग अभी बच्चों को ट्रेन भी करते हैं कि अगर आपके पास रिएजेंट नहीं है, तो आप कैसे उसको खुद से प्रिपेयर करो, आप कैसे करोगे आप, तो उसके लिए जॉनसन वायलेट पाउडर, ग्लासिल एसिटिक एसिड और डिस्टिल वाटर की जरूरत पड़ती है।
1: जी
0: हम लोग उसको प्रिजर्वेटिव के लिए फॉर्मलिन का भी यूज करते हैं,
1: हाँ जी
0: और एक इसका रेशियो होता है, उस रेशियो में हम लोग डायलूट करते हैं। डायलूशन के बाद रिएजेंट हमारा प्रिपेयर होता है, और एक 1:20 के रेशियो में डब्ल्यूबीसी डायलूटिंग फ्लूड और ब्लड, होल ब्लड यानी कि हम लोग होल ब्लड भी उसमें यूज कर सकते हैं, और एंड ईडीटी एंटीकॉगुलेटर ब्लड भी हम लोग उसमें
1: जी
0: यूज कर सकते हैं। 1:20 के रेशियो में डायलूट करना रहता है।
1: अच्छा
0: हम लोग उसमें एक, हम लोग दो मेथड से डायलूट करते हैं, एक हमारा डब्ल्यूबीसी पिपेट से भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारा होता है बल्क डायलूशन मेथड भी हम लोग बोलते हैं।
1: हाँ जी
0: 380 माइक्रोलीटर प्लस 20 माइक्रोलीटर के रेशियो में हम लोग, यानी कि 1:20 के रेशियो में हम लोग डायलूट करते हैं, और उसमें हमारा फंक्शन होता है जेंसन वैलेट का फंक्शन है डब्ल्यूबीसी को स्टेन करना, एंड ग्लासियल एसिटिक एसिड का काम होता है आरबीसी और प्लेटलेट को लाइसिस करना,
1: जी
0: ताकि डब्ल्यूबीसी को हम इजी वे निवार चेम्बर के थ्रू से, निवार चेम्बर एंड माइक्रोस्कोप के थ्रू से हम इजी वे काउंट कर सके, एंड देन काउंटिंग, फिर हम लोग
1: वो
0: उसको,
1: सारा मशीन के थ्रू काउंटिंग होता है, वो
0: फिर
1: उसमें
0: नहीं
1: नंबर
0: हम
1: आ
0: लोग
1: जाता होगा
0: अगर
1: आपका,
0: हम लोग सीबीसी
1: जैसे
0: अगर हम
1: एक
0: लोग करते, तो हम लोग
1: हाँ
0: मैनुअल मेथड से भी कर सकते
1: अच्छा
0: हैं,
1: अच्छा
0: और हम लोग फुली ऑटोमेटेड
1: लोग
0: मशीन से भी
1: हजारों में
0: करते
1: वो
0: हैं।
1: होते हैं तो उसे कैसे
0: हाँ
1: काउंट करते हैं
0: अगर
1: सारा।
0: डिपेंड करता है कि जैसे अगर हम लेबोरेटरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि बहुत सारे लैब में सीबीसी एनालाइजर नहीं होता है,
1: अच्छा
0: तो
1: जी
0: हम उस जगह पे, हम अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम अभी मैनुअल मेथड की बात कर रहे थे, तो मैनुअल मेथड में हम लोग निवार चेम्बर और माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं,
1: अच्छा
0: और फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर में हम लोग ब्लड सैंपल को शिपिंग कराने के बाद विद इन 1 मिनट हमारा रिजल्ट आउटपुट होता है। ये उसका क्राइटेरिया है सर। और ये हमारा टीएलसी यानी टोटल लिकोसाइट काउंट की बात कर रहे थे। डीएलसी में हम लोग, डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट में हम लोग की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना रहता है। डब्ल्यूबीसी का शेप, साइज, कलर के आधार पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड कलर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट
1: जी
0: एंड बेजोफिल। ये हमारा जनरली सर्कुलेशन ब्लड में नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं,
1: जी
0: तो इसके लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई के लिए हम लोग लिस्मन स्टेन या फिर हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन जैसे मे गुंडवाल जिम्सा स्टेन, फील्ड स्टेन का हम लोग यूज करके हम लोग डब्ल्यूबीसी का आइडेंटिफिकेशन। मैं कैरियर की वजह से और थोड़ा बोलना चाहूंगा,
1: हाँ,
0: जैसे अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा जैसे रेलवे हॉस्पिटल हो गया, बीएसएफ, आर्मी हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, रिम्स, यानी कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कई सारे वैकेंसीज हैं, कई सारे वैकेंसीज में। तो अगर कोई बच्चे अगर बीएमएलटी की पढ़ाई करते हैं, अगर रेगुलर में अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो अपने अंदर स्किल डेवलप किए हुए हैं तो वो बच्चे कहीं भी हमेशा उनको एक अच्छा एक उनके पास अपॉर्चुनिटी रहता है, कहीं भी जा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में भी, और खुद का लैब भी अगर ऑर्गेनाइज करना है तो भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि इसमें थियरी और प्रैक्टिकल को समझना करना और उसको अच्छी तरह से नॉलेज गेन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये सारा डिपेंड करता है, जो भी एक डॉक्टर अगर इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं तो सारा उसका ट्रीटमेंट एक लैबोरेटरी का रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है। अगर लैबोरेटरी का रिजल्ट अगर गलत हो तो उसका ट्रीटमेंट गलत। इसलिए अगर हम परसेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम यानी कि 70% जो डायग्नोसिस हमारा है वो लैबोरेटरी के रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है, और 30% हम सिम्टम के आधार पर हम डायग्नोसिस करते।
1: तो श्रोताओं, ये थे कुलदीप प्रसाद जी, जिनके माध्यम से हमने लैब टेक्नीशियन में छात्रों का करियर विषय पर अच्छी खासी जानकारी प्राप्त की है। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को उपलब्ध कराई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: तो अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में कैरियर का पुनः प्रसारण। भेंट वार्ता का वार्ताकार थे कुलदीप प्रसाद और उनसे बातें कर रहे थे अशोक कुमार। और उम्मीद करते हैं कि इस भेंट वार्ता से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम युवानी से अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

कॉलेज गर्ल फिल्म का अभी आप लोगों ने गीत सुना। आवाज थी किशोर कुमार की, संगीत तैयार किया था बप्पी लहरी ने। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में सीता और गीता फिल्म का ये नगमा। संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने और गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

और लता मंगेशकर की आवाज में गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पे समाप्त होता है। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग के केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर

0: विश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिली पॉलिटेक्निक में आयोजित नेशनल हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ऑटोमेशन एंड आईओटी सिस्टम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा और दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव ला रही हैं। राज्यपाल ने युवाओं को तकनीक आधारित कौशल से जोड़ने और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति के महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान मुंबई स्थित लिजत पापड़ इंटरनेशनल एम्पावरमेंट सेंटर का दौरा कर उसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन का प्रेरक उदाहरण बताया। कल्पना सोरेन ने जोर दिया कि इस तरह के सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की बड़ी क्षमता रखते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, घास उद्योग जैसे लघु उद्यमों से जोड़ना जरूरी है। देवघर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद पड़े रहने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण शहर में जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, जबकि प्लांट वर्षों से बंद पड़ा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और जनता के पैसे का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया के बिगड़ते भू राजनीतिक हालात को लेकर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है। रांची दौरे पर पहुंचे मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन समेत सभी क्षेत्र संभावित प्रभावों का आकलन कर अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार कर रहे हैं।
2: जिस तरह के वेस्ट एशिया क्राइसिस के साथ एक सिचुएशन बना है फ्यूल के साथ, ये केवल भारत में नहीं बाकी सारे देश में भी इस तरह है, तो उस सिचुएशन को हमें अपने कंफर्ट को रखते हुए जितना हो सके हम पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें, हमारे जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन लेके आए जिससे कि ये फ्यूल की जो क्राइसिस है उसके ऊपर थोड़ा सा हम योगदान दे सके। और रांची इतना सुंदर शहर है तो बाइक पे जाने का एक मौका, आनंद भी हुआ है तो अच्छा लगा हमें।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचनाओं पर तेजी से अंकुश लगाया जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आए अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने आज रांची सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं और केमिस्ट समुदाय ने ऑनलाइन दवा बिक्री, नकली दवाओं तथा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। जमशेदपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उलीडीह ओपी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं।
3: एक व्यक्ति जो संदिग्ध नजर आ रहा था, जो लक्ष्मण नगर छठगांव है उसके पास बैठा था, तो उसको जब गश्ती दल ने उसे पूछताछ की यहाँ क्यों बैठे हो, तो उसके पास में एक चमकती हुई चीज नजर आई जिसको देखने पर पता लगा कि वो एक देसी पिस्टल है, और पूछताछ पर पता चला कि उसका इस्तेमाल पंजारी या फिर धमकी देने में किया जाना था।
1: जामताड़ा के दुलाडी स्थित नगर भवन में आज जिला स्तरीय खरीफ फसल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने सरकारी स्तर पर उपलब्ध खरीफ फसलों के बीज, उर्वरक का सही मात्रा में उपयोग और असिंचित भूमि पर बेहतर कृषि कार्य कर बेहतर उत्पादन प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी।
4: ये कर्मशाला का आज का मुख्य उद्देश्य इस बार का है कि हमारा सुखाड़ का आसार है, हर एक साइकिल में एक बार सूखा आता है, जैसे इस बार अल्लीनो आने का इफेक्ट है, वो अगर 2 वीक लेट मानसून होता है तो क्या करे, 4 वीक लेट मानसून होता है क्या करे, अगस्त के बाद क्या करे, 15 सितंबर के बाद वो अर्ली रबी का कैसे तैयारी करे ताकि उनको कम से कम क्षति और नुकसान हो, और दूसरा है कि उनको तकनीकी जानकारी जो भी कृषि विभाग की है।
1: आकाशवाणी डाल्टनगंज नियंत्रण कक्ष के तकनीशियन श्री मनोज कुमार का कल उनके पैतृक स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक मृत्यु से आकाशवाणी रांची और डाल्टनगंज के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रांची जिला सीनियर तैराकी टीम के गठन के लिए जिला तैराकी संघ द्वारा 23 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वीर बुद्धू भगत एक्वेटिक स्टेडियम होटवार के तरणताल में चयन परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यह चयन 1 जून 2026 को जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में होने वाली 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 को देखते हुए किया जा रहा है, जिसमें रांची की बालक बालिका, पुरुष एवं महिला टीमें भाग लेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सिल्ली पॉलिटेक्निक में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा एआई और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक शिक्षा अहम। गांडई विधायक कल्पना सोरेन ने महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट के दौरान कहा कि सहकारी मॉडल समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की रखते हैं बड़ी क्षमता। देवघर में 37 करोड़ रुपए की लागत से बने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बंद पड़े रहने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र की सीबीआई जांच की मांग। टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिशासी अभियंता सिद्धांत कुमार ने पीएमएलए की विशेष अदालत में किया आत्मसमर्पण, अदालत ने दी सशर्त जमानत। और 15वीं झारखंड राज्य सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2026 के मद्देनजर रांची जिला सीनियर तैराकी टीम के लिए ट्रायल 23 मई को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: प्रस्तुत है जिले में आज का।

0: अंक में आप सुनेंगे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: श्रीनाथ यूनिवर्सिटी आदित्यपुर के योग विभाग और सरायकेला खरसावां जिला योगासन खेल संघ के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता 2026-27 का भव्य आयोजन हुआ। आयोजन समिति के सचिव उदय सिंहदेव ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर मिला। उन्होंने कहा कि
2: सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान से जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हुआ और इसमें बहुत सारे प्रतियोगी जो ग्रामीण क्षेत्र में छुपे हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपना खेल दिखाने का मौका मिला और आज हम लोग यहां पर डिस्ट्रिक्ट टीम का भी सिलेक्शन किए हैं और हम लोग देखे हैं कि हमारे यहां पर बहुत सारे बच्चे योगा के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं।
1: भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य गम्हरिया शंभु मंडल ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने अनियमित बिजली आपूर्ति के साथ साथ सही तरीके से केबलिंग नहीं करने तथा स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोलाबिरा क्षेत्र में काफी कम ऊंचाई पर बिजली के तार झूल रहे हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि
3: पूरा जिला में बिजली विभाग का स्थिति चरमरा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पूरा टाइम बिजली गायब ही रहता है। अगर कोलाबिरा क्षेत्र में देखा जाए तो एक स्कूल है जहां उसका आगे में तार झूला हुआ है, 2 से 3 खंभा तक का पोल है। यदि उस जगह में केबल दिया जाए तो सुरक्षित रहेगा। यदि बिजली विभाग से कोई NOC भी मांग रहा है कि भाई हमें आपका बिजली नहीं चाहिए तो NOC देने के लिए भी बिजली विभाग आनाकानी करता है, 6 महीना तक उसका समय लगाते हैं। स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है गाँव घर में और उनका बिल तक अभी जल्दी में नहीं आ रहा, 6-7 महीना में आ रहा है, हरे भरकम बिल देकर दे रहा है।
1: उत्कल सम्मेलनी द्वारा झारखंड के 3 जिलों पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में वर्ग 9 एवं 10 के उड़िया छात्रों के बीच उड़िया साहित्य की पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही है। इससे भाषा संरक्षण को लेकर उत्कल सम्मेलनी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को काफी बल मिल रहा है। जिला पर्यवेक्षक सुशील कुमार सारंगी ने कहा कि उड़िया भाषा एवं साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है ताकि छात्र अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें और भाषा के प्रति उनका लगाव बढ़े। सुशील कुमार षडंगी ने कहा कि
4: उड़िया भाषा जो किताब साहित्य किताब 9 एवं 10 का किताब हम लोग निःशुल्क वितरण किए। इस जो किताब हम लोग वितरण किए यह किताब 1998 यह किताब चल रहा था हम लोग का झारखंड में, लेकिन यह किताब बड़ी दुख की बात है कि झारखंड सरकार द्वारा यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा था। जो हम लोग के झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय दिनेश सरंगी जी के प्रयास से झारखंड में 3 जिला में वितरण किया जा रहा है और उसी के ये में आज सरायकेला में भी वितरण किया गया।
1: उत्कल सम्मेलनी द्वारा पाठ पुस्तक वितरण के माध्यम से भाषा संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान को साकार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उड़िया शिक्षकों का मानदेय पिछले 2 वर्षों से लंबित है जिससे यह अभियान कमजोर पड़ रहा है। बिना मानदेय के शिक्षक इस अभियान को प्रभावी ढंग से कैसे पूरा करेंगे यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला।
0: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम झनकार।

तो अभी आपने सुना सिम्भा फिल्म का ये नगमा, आवाजें थी नेहा कक्कर की और मिक्का सिंह की। और आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं तनु वेड्स मनु फिल्म का ये नगमा।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पोटवाल और सोनू निगम की आवाजों में गाए पृथ्वी फिल्म के इस गीत के साथ।

तो लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना कालीचरण फिल्म का ये नगमा, और आइए आगे आपको सुना रहे हैं अभिमान फिल्म का ये नगमा, और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: कभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर?
1: तो भी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में इस गीत को, और आइए आगे आपको सुना रहे लता मंगेशकर की आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं। पेश है फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपके चाहत सुन रहे दोस्तों को आपके रेडियो दोस्त वंदना अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आपके प्यारे प्यारे खतों के साथ हाजिर हूँ कार्यक्रम आपके चाहत में। आपके प्यारे भरे गीतों के साथ तो यह पहला खत हमें आया है बड़काकाना से। आप हैं अफजाल ताज, साहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिम। आप हैं नवादा कुंडलबाग हजारीबाग से। जगदीश महतो, संजय कुमार, अजय कुमार, बिट्टू कुमार, प्रतीक कुमार, प्राची और कृतिका कुमारी। आप हैं दिल्ली शहर से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए आप सबों के फरमाइश पर प्रोग्राम का पहला नगमा सुनते हैं।

इस गीत के लिए फरमाइश भेजी थी मानगढ़ से आप हैं मिथिलेश पांडे, बबीता देवी, नीतू कुमारी, अंशु कुमार पांडे, बाबू सुधांशु पांडे, अभिषेक कुमार और परिवार के सभी सदस्य। और इसी गीत के लिए फरमाइश की थी गांव दलाई केलस से लक्ष्मण स्वयं, गीता, शरीता, सिम्मी और इनके ढेर सारे दोस्तों ने। और आइए प्रोग्राम का अगला नगमा आपको सुना रहे हैं और इसकी गीत के लिए फरमाइश भेजी है सम्राट चौक सिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, सोनाली देशमुख, आरव, विपिन, रेणुका जी।

वाय देशमुख और अश्विनी मौसमी, और आप हैं ग्राम कुर्तिक कुंडी झारखंड से मनोज, सोनाली, आयशा, रचना, बुद्धू, जितेंद्र, साधु, पीताम्बर महतो, नंद किशोर महतो, और आप हैं बरही से वासुदेव मालाकार, संगीता देवी, अनुपमा कुमारी, अंजलि मालाकार, गंगा, ज्योति कुमारी और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए आप सबों के फरमाइश पर सुनते हैं

इस गीत के लिए फरमाइश भेजी थी हजारीबाग से, आप हैं समीम, निखत, खलील, आरजो, नसीम, नूर, हसीना खातून और इनके ढेर सारे दोस्तों ने। आप हैं झुमरी तलैया से उमेश चंद्र पांडे, शंभू, अनिल, शाकेत, शुभम, नर्मदा, अक्षता, प्रियंका, शमीम, अपराजिता और परिवार के सभी सदस्य। और आप हैं बड़काकाना से भानु पासवान, अशोक, सुधा, मंजू, रेखा, सुनीता, पूनम, बिट्टू, अनवी और अप्पू। और प्रोग्राम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इसके लिए फरमाइश आई है ग्राम पोचरा से, आप हैं महेश राम, सरिता देवी, पिंटू, वर्षा, फुलवासी देवी। आप हैं इंद्रपुरी चौक से दिलीप कुमार, अरविंद कुमार और इनके ढेर सारे दोस्त। और आप हैं छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मुकेश शर्मा, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा। आप हैं झुमरी तिलैया से विजय, भोला चौधरी और सुधीर कुमार।

और प्रोग्राम का आखिरी नगमा के लिए फरमाइश भेजी है ध्रुवा बांधा से, आप है प्रमोद साहू, देव कुमार, नीतराम और भूपेंद्र शाह।

और आप है गौतम बिहार कॉलोनी से, राघव रिद्धि और सुभि, और आप है बड़का काना से रविंद्र, अमन, आरती, उर्वशी, रिया और

अभी आप सुन रहे थे फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपके चाहत FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9 हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नवन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नडिगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ति, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पर आए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतरनाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। पिताजी आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बली यू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

चंदनंदु कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम रजनी गंधा।

तो अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में गाए चोरी चोरी फिल्म का ये नगमा। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में गाए इस गीत को।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

So, first of me, I film. के गीतों को जब याद किसी की आती है या फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए धर्मेंद्र, माला सिन्हा, अभी भट्टाचार्य और भी कई कलाकार, तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में गाए प्रोग्राम का पहला।

तभी आपने सुना लता मंगेशकर के आवाज में गाए इस गीत को, और आप सुन रहे कार्यक्रम एक फिल्म से। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही दिन में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabanna during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders.

यही संपन्न होता है हमारा आज का प्रसारण। कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।